ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती

0: मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है आनंद। आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: मित्रों नमस्कार। आज का विचार कार्यक्रम में हम विचार करेंगे आनंद पर। परमात्मा की जितनी भी परिभाषाएं की गई हैं उनमें सर्वोपरि परिभाषा उनके सत चित आनंद स्वरूप की गई है। निश्चित रूप से परमात्मा सत्य है, चैतन्य है और आनंद से भरपूर है। आनंद सुख और दुख दोनों से परे एक नैसर्गिक स्थिति है, स्वतः स्फूर्त अपने आप से जो होता ही चला जाए, अपने आप से जो आविर्भूत होता रहे, एक सतत प्रक्रिया है। सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन आनंद न कहीं जाता है न कहीं से आता है। आनंद वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह तो एक स्थिति है। आनंद न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है, आनंद तो बस होता है। जिस प्रकार से हम सुख लेते हैं देते हैं, दुख लेते हैं देते हैं, वैसे आनंद लिया और दिया नहीं जा सकता। आनंद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आनंद एक स्थिर मूल्य है। आनंद एक चिरंतन दशा है। आनंद को उपलब्ध मनुष्य फिर कभी दुख के गर्त में नहीं पड़ता, न उसे सुख प्रभावित करता है, न ही उसके मन में सुख की लालसा पैदा होती है। जब हम भगवान बुद्ध के बारे में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वे शाश्वत आनंद की स्थिति को प्राप्त हो गए थे, जहां न दुख उन पर प्रहार कर सकता था न सुख उन्हें आकर्षित कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं, वैसे आनंद के लिए लालसा भी काम नहीं करती। आनंद तो एक समझ है जो आपके भीतर विकसित हो जाने पर आप पाते हैं कि अरे ये संसार तो एक बहुत बड़ा नाटक है, एक बहुत बड़ा खेल है, जिसमें सुख और दुख दो पालों में बटे हुए लोग आमने सामने हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जो आज सुख की दशा में है वह कल दुख की दशा में भी हो सकता है, लेकिन जो आनंद में है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं जा सकता। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद आए तो आप चीजों को ठीक से समझें, जाने कि ये किस प्रकार से संचालित हो रही है, किस प्रकार से प्रारब्ध काम कर रहा है, कहां पर लाभ हो रहा है कहां पर हानि हो रही है, इन चीजों में बहुत उलझना नहीं है। ये तो आने और जाने वाले हैं, इसलिए इनकी परवाह नहीं करनी। जो मनुष्य आनंद की स्थिति में होता है वह हमेशा प्रफुल्लित रहता है, उसके चेहरे पर एक नैसर्गिक तेज कायम हो जाता है। हम सब आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, बस सुख की चाहना और दुख से मुक्ति की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। सुख आए तो ठीक, दुख आए तो ठीक, मैं तो आनंद में हूं। प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास में सूरदास की झोंपड़ी

0: जला दी जाती है तो वह राख टटोलते हुए अपने चांदी के सिक्कों की तलाश करता है, लेकिन उसकी लाठी जब कहीं भी किसी सिक्के से नहीं टकराती तब वह जोर जोर से रोने लगता है। तभी पास में खेल रहे दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। एक बच्चा कहता है, खेल में रोते हो? जैसे ही सूरदास ये सुनता है उसे अंतर्ज्ञान होता है। वह कहता है, अरे ये तो खेल है, इस खेल में चीजों के नष्ट हो जाने पर रोना कैसा। और वो वहीं पर आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन हम सबके जीवन में आए, हम चिर आनंद को प्राप्त हों, यह एक संकल्प हमें अपने भीतर पैदा करना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आनंद विषय पर आज का विचार, आलेख और निवेदन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं आनंद कुमार और साथियों का गाया हुआ ये भक्ति गीत।

अभी आपने सुना सतीश देहरा का गाया हुआ ये भजन। कार्यक्रम के अंत में सुनिए आनंद कुमार और साथियों की आवाजों में ये भक्ति गीत।

इस भक्ति गीत के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावरु चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 178 क से दोहा संख्या 180 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 8:45 पर सुनना न भूलिएगा। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, आज आप सुनेंगे इसका 12वां अंक। वाचिका श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत रामलेखा और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। समय याद रखिएगा सुबह 8:45। सुबह 8:30 पर सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री संजय श्रीमाली की वार्ता, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके और वर्तमान में उसकी उपादेयता। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1312वां अंक आज आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, और सुबह 10 बजे फिल्म संगीत 10:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से आज आप सुनेंगे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। दस बजकर 40 मिनट पर फिल्म संगीत, अलावा इसके फिल्म संगीत 11:33 पर, और दिन में 2:30 पर विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे और 11:13 पर। बहने सुनेंगी घर आंगन कार्यक्रम दिन में 1:05 पर, और आकाशवाणी जयपुर से सिंधी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:10 पर।

युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण हम करेंगे शाम 5:05 पर, और शाम 6:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, और लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर, और रात 10:00 भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम रहेगा फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। समय याद रखिएगा रात 10:00।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहें तो मिलाइए, सुबह के ठीक 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए श्री राम स्वरूप विश्नोई की वार्ता, खेत का रखवाला है बीजू का।
1: किसान भाई राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम आए आज आप आते ही कर हाँ। आपने खेत रे रुखाड़े किसान भाईले मित्र बेली जकर नाम है बीजू का। कौन समझा? बीजू का मतलब अड़ुओ, जके ने सेना लोग धोखो केवे, छल केवे, कपट केवे। कह खातर की अड़ुओ इसो जो को ने तो खेत खे ने खावन दे। बिया कितनी फूटरी बात संत विलो जी कियो कि अड़वो चुगे न चुगन दे, मानसरी उनिहार वील के भया सुम बड़ो संसार। अपन व्यवहार में इसो काम को नहीं कर।

0: चाहें तो मिलाइए। सुबह के ठीक 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए श्री राम स्वरूप विश्नोई की वार्ता, खेत का रखवाला है बीजू का।
1: किसान भाई राम राम। खेती बातें कार्यक्रम आए आज आप ही कर हाँ। आपने खेत रे रुखाड़े किसान भाईले मित्र बेली जकर नाम है बीजू का। कौन समझे? बीजू का मतलब अड़ुओ, जके ने सेना लोग धोखो केवे, छल केवे, कपट केवे। कै खातर कि अड़ुओ इसो जो को ने तो खेत खे ने खावण दे। बिया कितनी फूट री बात संत विलो जी कियो कि अड़ुओ चुगे न चुगण दे, मानस री उनिहार वील कह भाया सुम बड़ो संसार। अपन व्यवहार में इसो काम को नहीं करनो। अड़ुआड़े ज्या की न खावे न खावण दे न चुगे न चुगण दे, पर अड़ुओ किसान रो भाईलो है, बीजू का बेली है। वो मिनक तो कोनी पर मिनक जिसो दिखे। दुनिया भर रा किसान बे आपरे खेत में लगावे ताकि बारी फसल ने पंखेरू रोपुड़ा बीज ने अंकुरा ने नहीं खा सके और फसल मोटी हुए जन पछ कोई डांगरो पशु जिंदावर भी फसल नहीं खा सके। इरे वास्ते बीजू का किसान रो बेली है, खेत रो रुखाड़ो है। अब ठेके हो के जरूरत कहीं है बीजू कारी तो आपने ठा हुए ला कि अपना बडेरा आज अड़े ताई करंट आला तार को लगाऊता नहीं, लंबी चौड़ी तार बंदी कौन करता। जकम बापड़ा निरीह पशु फसर मर जावे, जीव हत्या हो जावे, अपन पाप लागे। बडेरा खेत में बीजू को खड़ो करता, खुद भले ही डाणी में रहो चाहे गांव जाऊता, पर वो बीजू को भी खेतरी रुखाड़ी करतो। और आज भी सेना लोग आपरे खेत रे मायने अड़वो लगा रखे। वो मिनक जिसोई है पर वो बोल अरकी को गैनी आपरी शकल नु डरावे। जके हूँ जीव जंदावर अड़गा रेवे, कोई इनिया है, शालिया है, रोजड़ा है, हुल्डा है, बिना देख रू हो चे कि कोई आदमी उबो है ला। अब थे होचोगे वो तो गण ही सस्तो है, सरल है, टिकाऊ है, लागे इया हिलतो डुलतो जाने कोई मिनक खेत में काम कर रियो है। ए देखो सा आपरा न्यारी न्यारी कला है बनाने री। अब हूँ थोड़ी बात करूँ कि आप बिना किया बना सका हाँ। तो आप दो कोई मोटी लकड़ी लेर मानव आकारी अपनी कांधे ताई आली, दो लकड़िया ने तिरछी बांधर बीच में बांध दो। बीरे ऊपरले हिस्से में कोई आपन पुराणो कुर्तियो पड़ियो हलो, चोड़ो पड़ियो हलो, दादाजी आलो फटूड़ो कोई पूर पड़ियो हलो, बीने पहरा दो। और नीचे चाहो तो बडेरो बनाना है तो धोती पहरा दो, नहीं जो कोई जवान भाई बनाना है तो घर में कोई टाबरिया री पेंट पड़ी हला, बरमुंडो पड़ी हलो, हा पेंट पड़ी हली बा पहरा दो, बीड़ो नाड़ो बांधर माथो किया बनाओ। थे जानो कि पुराना लोग तो माथे हांडी राखता। अब थे के वो हांडी तो मैं बपरावा ही कोनी, बर्तन तो स्टील रा आ गया, पीतल कांसा तांबे रा आ गया, माटी रा बर्तन तो रिया कोनी। काली कोई चीज या फिर यूं करो पुरानी मटकी कोई बचूड़ी हुए बीर माथे कालो पेंट कर दो ताकि जीव जिंदावरा नहीं लागे कि वो मिनक रो माथो है। देखो माथो बनाना जरूरी है। और आजकल तो थोड़ा किसान का ये मॉडर्न भी हो गया। आपने हंसी आवेला कि कई लोग तो बीरे कान रे माथे चश्मा ठहरा दे, कई एक हाथरो कोई खेत में लागुड़ो देखियो कि एक अड़ुए रे तो एक बीजू के हाथ में तो आज अड़ो मॉडर्न फोन ले उड़ो। अब कोई मिनक फोन पर बात कर रही है जी लाग रही है तो अपन भी कोई बिना आधुनिक रूप दे सका हाँ। पर है हस्तो काम भी हूँ कहीं हुई। एक तो अपनी आज की पुरानी विरासत है, अपनी जकी कला है आ बछुड़ी रही, और एक अपने खर्चो को लागे नहीं। पर एक सावचेती आ राखनी है कि बीरे ऊपरले हिस्से ने थोड़ो वजन ज्यादा राखनो है ताकि वो हिलतो डुलतो रहे और पड़े नहीं। नीचला दो गोचा है जका जमीन में चोखा रोपना है, रोपो तो इतनी सावधानी राख्या कि कई बार भी गोचा ने उदय लाग जावे तो कोई राख हागे मिला दिया, बानी हागे डाल दिया, जका भी लकड़ी ने उदय नहीं लागे और वो अड़ुओ पड़ नहीं जावे। कई बार आदमी भी हाथ में पानी पीने वाली बोतल दे दे जके फूटरो भी लागे और टाबरिया राजी हुए देख हर। अब समय रे सागे बीजू का जो को पैटर्न है वो बदल गयो, पर बीरो जो को काम है वो नहीं बदलियो है। बीरो काम आज भी वो ही है कि वो न तो खेत में दूजा जिंदावरा ने बढ़न दे। अब वो मना तो को करे नहीं पर बिन देख हर कई डरन लाग जाए और पाछा हिरक जाए तो न वो चुगे न चुगण दे। इतनी फूटरी बात आप बीजू के व्यवहार में राखे जके ना आप आम बोल चाल री भाषा में अड़ुओ के वो तो अड़वे रो काम खेतरी रुखाड़ी है, किसान रो हगलो मोटो और शांत रो बाहिलो है।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्री रामस्वरूप विश्नोई की वार्ता, खेत का रखवाला है बीजू का। आइए अब सुनते हैं सतीश देहरा का गाया हुआ ये लोक भजन।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

एक्ट 2012। बैड टच से बच्चों को बचाएंगे, पॉक्सो कानून को सफल बनाएंगे, डरेंगे नहीं अब हम, खुलकर बोलेंगे, शोषण का आराज हम सभी खोलेंगे, अच्छा और बुरा स्पर्श मेरे बच्चों पहचानो, डरना छोड़ो, सच को जानो। आज के युग में अपराध तथा आपराधिक मानसिकता से हर आयु वर्ग, सभ्यता व संस्कृति बुरी तरह से त्रस्त है। इसमें भी बच्चों से संबंधित बढ़ते हुए अपराध हर राष्ट्र के लिए विश्व भर में चिंता का विषय है। इन अपराधों से भारत भी अछूता नहीं है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट में लगभग 54,359 मामले केवल पॉक्सो एक्ट में दर्ज किए गए। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 23% लड़कियों का 18 वर्ष से पहले ही यौन उत्पीड़न किया जाता है। MP, UP, महाराष्ट्र आदि राज्य बाल हिंसा में शीर्ष पर है। राजस्थान में बच्चों से यौन हिंसा पर काफ़ी ऊंची है। राजस्थान में भी यौन हिंसा दर काफ़ी ऊंची है। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन यानी कि UNCRC अपनाया तथा जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को हर तरह के शोषण हिंसा से बचाना है। भारत में भी 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए। इसी वैश्विक जिम्मेदारी को देश में कानूनी रूप देने के लिए 2012 में पॉक्सो एक्ट 2000 बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट की मुख्य प्रावधानों के बारे में बात करें तो यह एक विशेष कानून है जो कि संपूर्ण भारत पर लागू है। यह एक्ट भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाने का मुख्य उद्देश्य ही 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को लैंगिक शोषण, बाल पोर्नोग्राफी, चाहे वह फिजिकली हो या ऑनलाइन के माध्यम से, हर तरह के हरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान करना था। यह एक लिंग तटस्थ कानून है यानी कि यह लड़कों और लड़कियों दोनों को यौन शोषण से समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। इस एक्ट की मुख्य विशेषता यह है कि इस एक्ट में महिलाएं भी अब अपराध करती है तो उन्हें अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इस एक्ट में कुल मिलाकर 9 अध्याय, 46 धाराएं व एक अनुसूची है। 14 नवंबर 2012 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसके सभी अपराधों व धाराओं में बच्चों से संबंधित होने वाले विभिन्न अपराधों का तथा दंडों का समावेश किया गया है। बच्चों को यौन हिंसा तथा आज के युग में ऑनलाइन, AI या अदर किसी भी संचार माध्यम से किसी भी प्रकार की अश्लील या कामुक बच्चों का समावेश करने वाले किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफिक के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई करने हेतु इस एक्ट को बनाया गया है। 19 जुलाई 2019 में इस एक्ट में संशोधन कर इन अपराधों हेतु मृत्युदंड के रूप में भी सजा का प्रावधान किया गया है और इसे कठोर बनाया गया है ताकि बच्चों को यौन हिंसा को कठोरता से रोका जा सके। कानून की नज़र में नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम की रजामंदी या सहमति का कोई मतलब नहीं है। यदि कोई नाबालिग होते हुए भी शारीरिक संबंध बनाता है तो एक दूसरे की सहमति से होने वाले किसी भी प्रकार के यौन कार्य में पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। आरोपी को इस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। यह एक गैर जमानती व संज्ञेय अपराध है। इस एक्ट में दर्ज मामलों में आरोपी को खुद के निर्णय साबित करना होता है जो कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। यदि किसी भी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ या गलत हरकत की जाती है तो इस कानून के तहत अपराधी को पुलिस बिना वारंट तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट की विभिन्न धाराओं में यौन मामलों तथा उसके दंड से समाहित किया गया है। इसमें मुख्यतः प्रवेशन लैंगिक हमला और लैंगिक हमले से संबंधित अपराधों का समावेश किया गया है। जब बच्चे के साथ किसी प्रकार से जबरन दुष्कर्म किया जाता है तो इस प्रकार के अपराध को प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जिसको धारा 4 के अंदर 10 साल तक की आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया गया है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के मामलों में भी यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों का समावेश किया गया है, जिसमें लगभग 3 से 5 साल की कठोर सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही स्थिति और गंभीर हो जाती है यदि लैंगिक हमला और यौन उत्पीड़न किसी भी प्रकार के पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी रिश्तेदार का द्वारा किया जाता है। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ धारा 11 और 12 में लैंगिक उत्पीड़न आदि से संबंधित बच्चों को अश्लील इशारे करना,
किसी प्रकार के कमेंट्स करना या किसी प्रकार की अश्लील तस्वीरें दिखाने

को परिभाषित तथा दंडित किया गया है। धारा 11 में दोषी व्यक्ति को 3 साल की सजा और जेल के प्रावधान किए गए हैं और जुर्माना या दोनों हो सकता है। आज AI मोबाइल के ज़माने में बच्चों को अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी से बचाना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण इस एक्ट की धारा 1315 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जोड़ा गया है। धारा 13 में किसी भी बच्चे का उपयोग अगर अश्लील तस्वीर वीडियो या सामग्री बनाने या दिखाने या प्रसारित करने में किया जाता है तो उसके लिए धारा 14 के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा तथा बार बार अपराध करने पर न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अश्लील सामग्री को अपने पास डिजिटल रूप में या किसी अन्य माध्यम से रखता है या किसी को दिखाता है तो वह धारा 15 में दंडनीय अपराध है और इसके लिए 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऐसे सभी अपराधों के साथ साथ उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्नों को भी धारा 16 से लेकर 18 में दंडनीय बनाया गया है। बाल यौन अपराध होने पर इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस या विशेष किशोर पुलिस यूनिट को यानी कि SJPU को देना आवश्यक है। ऐसी सूचना पर हर व्यक्ति विशेष रूप से बाल चिकित्सक और शिक्षकों देने की कानूनी बाध्यता आरोपित की गई है। यदि कोई अपनी जानकारी गुप्त रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी बाल यौन अपराध की रिपोर्ट करने में FIR करने में यानी कि सूचना दर्ज करने में विफल रहता है तो उसे धारा 21 के तहत 6 माह की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यौन अपराध से संबंधित बच्चे की पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। धारा 20 में यह कहा गया है कि मीडिया स्टूडियो आदि के लिए भी अनिवार्य है कि वह बच्चों की पहचान को पूर्णतः गुप्त रखे, लेकिन धारा 22 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को बदनाम करने या झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो झूठे आरोप लगाता है तो उसे सजा तथा जुर्माना मिल सकते हैं। यौन बाल अपराधों का त्वरित निपटारा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हर जिले में विशेष न्यायालयों का गठन करने की बात भी इस एक्ट के धारा 25 और 26 में कही गई है। वहीं धारा 28 से लेकर 30 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी यौन उत्पीड़न बालक की कार्रवाई साधारणतः और विशेष रूप से बंद कमरे में और गोपनीय ढंग से की जाएगी और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्दा या दर्पण आदि का यूज में किया जाएगा। यानी कि आपकी जो जांच प्रक्रिया है वह बाल सुलभ होनी चाहिए और बच्चे को बार बार कोर्ट में अपराधी के सामने नहीं लाना जाएगा और इसका ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के अधिकार को सुरक्षित रहे इस हेतु एक विशेष वकील की सहायता भी बच्चे को दिलाई जाती है। पीड़ित बच्चे को विशेष न्यायालय अपराधी पर लगाए गए जुर्माने में से मुआवजा भी दिलवाने का आदेश कर सकता है। यह धारा 39 के तहत कहा गया है। किसी भी बालक के साथ यौन हिंसा होने पर उसके पुनर्वास चिकित्सा आदि का विशेष ध्यान इस अधिनियम में रखा गया है। साथ ही साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों पर इसकी जागरूकता समाज में पॉक्सो एक्ट का दायित्व डाला गया है ताकि बच्चों को यौन हिंसा तथा उत्पीड़न से समय रहते बचाया जा सके। धारा 34 में कहा गया है कि यदि किसी बालक की आयु का निर्धारण किए जाने आवश्यक है तो विशेष न्यायालय के द्वारा उसका आयु का निर्धारण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 35 में कहा गया है कि विशेष न्यायालय यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्स बालक की साक्ष्य को न्यायालय में संज्ञान करने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित करेगा तथा मामले का निपटारा हर हाल में 1 वर्ष के भीतर जो है वह पूर्ण करेगा। इस प्रकार भारत और दुनिया भर में कई कार्यकर्ता तथा संस्थाएं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण और बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं, जिसमें भारत में कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था और वे बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, उन्होंने दुनिया भर में बाल शोषण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाए हैं और उनके नेतृत्व में जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड जैसी पहल पॉक्सो एक्ट में त्वरित न्याय को सुनिश्चित करती है। मलाला यूसुफोई सिंडी ब्लैकस्टॉक कनाडा की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, डॉक्टर महा अल मुनीफ और सऊदी अरब की कार्यकर्ता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। भारत में भी इनके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग भी हैं जो कि बालक के अधिकारों और पॉक्सो एक्ट के सही कार्यान्वयन की निगरानी रख रहे हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम भारत संघ 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने

0: स्पष्ट कह दिया है कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, देखना, ऑनलाइन सेव करना पॉक्सो तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 15 तथा आईटी एक्ट के तहत अब गंभीर अपराध में माना जाएगा। इसी प्रकार अटर्नी जनरल बनाम 30/2021 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले को पलटते हुए कहा था कि पॉक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न के लिए सीधा शारीरिक संपर्क यानी कि स्किन टू स्किन होना जरूरी नहीं है। कपड़ों से ऊपर भी कि किसी प्रकार की हरकत जो यौन इरादे से की गई है यौन उत्पीड़न की श्रेणी में मानी जाएगी और अपराधी यौन उत्पीड़न का दोषी पॉक्सो एक्ट में माना जाएगा। स्मृति ईरानी जो कि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री है ने भी संसद तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पॉक्सो एक्ट को मजबूत बनाने हेतु अपनी भूमिका निभाते हुए कहा है कि बाल यौन शोषण केवल एक शारीरिक चोट नहीं है, यह बच्चे के दिमाग पर जीवन भर के लिए एक गहरा आघात छोड़ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध अक्षम्य हैं। इसी कारण उन्होंने 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके मृत्युदंड का समावेश किया था। इस प्रकार पॉक्सो एक्ट में बच्चों की सुरक्षा हेतु शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस हेतु तीव्र पुलिस अन्वेषण, बच्चों की गोपनीयता के साथ साथ त्वरित न्याय हेतु समय सीमा के भीतर मामलों को निपटारे के साथ साथ बाल यौन पीड़ित की उचित चिकित्सीय जांच तथा मुआवजे, पुनर्वास आदि अनेक प्रावधानों का सख्ती से तथा जमीनी स्तर पर कठोरता से सरकार की पूर्ण निगरानी में पालन किया जा रहा है और पॉक्सो एक्ट अन्य कानूनों के साथ साथ बालकों की यौन हिंसा और उत्पीड़न से बचाने हेतु पूर्णतः प्रयासरत है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ही हर बच्चे को भय मुक्त और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी श्री पीयूष कुमार किराड़ू की वार्ता पॉक्सो एक्ट 2012, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की थी और संयोजन श्री अमित सिंह का था। कलियां सुरक्षित रहेंगी, या यूं कहें कि बचपन सुरक्षित रहेगा, तभी तो ये चमन मुस्कुराएगा। जब हर बच्चा बेखौफ होगा, तभी देश का कल

साथियों, हुनर है तो कद्र है, हुनर है तो मुकाम है, बिना कौशल के तो हर सपना बेनाम है। खुद के पैरों पर खड़े होने की जिद तो करके देखो, क्योंकि आपके हाथों का हुनर ही आपकी असली पहचान है। जी हाँ साथियों, हुनर बदलता है तकदीर, कौशल विकास आपको सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाला यानी बिजनेसमैन बना देता है। सरकार की मदद, आजकल स्किल इंडिया जैसी कई योजनाएं के जरिए युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए लोन की सुविधा दे रही है, तो देर किस बात की। अपनी रुचि को अपनाइए, अपने हुनर को तराशिए और खुद के रोजगार से आत्मनिर्भर बनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है बातों बातों में।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अमित कुमार का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों

चलते चलते फिल्म के लिए यह आवाज है किशोर कुमार की। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: फैन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए श्री संजय श्रीमाली की वार्ता, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके और वर्तमान में उसकी उपादेयता।
3: पानी और मनुष्य का आपसी रिश्ता सदियों पुराना है। मनुष्य जीवन पूर्णतया पानी पर निर्भर था एवं है। 5 महाभूतों में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को लिया गया है। यह 5 वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं और यह 5 महाभूत पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। इसमें भी जल को श्रेष्ठ बताया गया है। वेदों में भी पानी के 5 महत्व को बहुत मजबूती से स्वीकारा गया है। जल प्रबंधन का प्रथम साक्ष्य राजस्थान में सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिलता है एवं यह प्रथम होने का सौभाग्य बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा नामक स्थान को जाता है, जहाँ के निवासी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए कुओं का निर्माण किया गया। जल उंडा, थल उजला, नारी नवले वेश, इन उक्त में बीकानेर में जल के माप को बखूबी बताया गया है। यहाँ जल स्तर बहुत नीचे है और थल बालू रेत के कारण साफ दिखाई देती है। यहाँ की नारियों की वेशभूषा भी बहुत ही निराली है। दूसरी ओर यह भी कि बीकानेर से में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ गहरा पानी गहरे लोग, अर्थात यहाँ का पानी गहरा है। उसी प्रकार यहाँ के लोग बहुत गहरे यानी सहनशील है। बीकानेर में जल का कोई भी प्राकृतिक संसाधन यानी नदी, झरने, सागर आदि नहीं है। इस प्रदेश में मानव द्वारा निर्मित ही जल साधन हमें उपलब्ध है। मानव द्वारा निर्मित जल संसाधनों में मुख्यतः कुएं, कुंड, बावड़ियाँ एवं तालाब आदि मुख्य हैं। इन जल संसाधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वह संसाधन जिनमें वर्षा के जल को एकत्रित हो और इनमें ताल, तलैया, कुंड, बावड़ियाँ आदि आते हैं। दूसरा जल संसाधन जिसमें पाताल से पानी आता हो। इस संसाधन में केवल कुआ मात्र ही ऐसा संसाधन है जिसमें नीचे से पानी ऊपर की ओर आता है। तालाब एवं बावड़ियों का पानी खुला रहता है, जिससे इनके पानी में रेत के कण, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि अधिक मात्रा में मिलने की संभावना रहती थी। तालाबों में यह दिक्कत ज़्यादा रूप से देखने को मिलती थी, क्योंकि प्रत्येक तालाब में गऊ घाट की व्यवस्था थी। वहाँ पशु पानी पीते थे, लोग तालाबों में नहाते थे। इन सब से पानी किसी न किसी प्रकार से दूषित होता था। जनमानस में ऐसी भावना रहती थी कि इन जल स्रोतों से प्राप्त पानी को उपयोग पीने के अलावा अन्य कामों में ज़्यादा लिया जाए। मुख्यतः ताल तलाइयों का पानी नहाने, कपड़े धोने या घर के जरूरत अनुसार अन्य कार्यों में लिया जाता था। दूसरी ओर कम वर्षा या वर्षा के अभाव में यह जल संसाधन सूख जाते थे। अकाल जैसी भयावह स्थिति पैदा हो जाती थी। बीकानेर में वर्षा के अलावा पानी का अन्य कोई स्रोत था तो वह था कुआ। इसलिए जल संसाधनों में कुएं का बहुत बड़ा स्थान है। बीकानेर के कुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार का पानी हमें पीने को मिलता है, जिसमें सबसे उत्तम पानी मीठा द्विधारी पानी, जिसमें मीठा नमकीन मिला हुआ हो, और उसको हम स्वाद में चरचरा पानी कहते थे। यह चरचरा पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना जाता था। यह पानी मुख्यतः पेट संबंधी दिक्कतों तथा त्वचा संबंधी रोगों में बहुत ही उपयोगी माना जाता था। बाकायदा बेणेश्वर कुएं का पानी देश की बड़ी शोधशाला तक पहुँचाया गया। तीसरा पानी

खारा यानी कड़वा था। जिस कुएं से खारा पानी निकलता था उस कुएं को खारिया कुआ कहते थे। जिस प्रकार से जितना मुश्किल काम कुएं की गहराई की थाह लेना है उतना ही कठिन कार्य इन कुओं के इतिहास को जानना है। इतिहास को जान लेने के बाद भी उनको अक्षरों में समेटना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब हम कुओं के पास जाते हैं तो यह कुएं हमसे बातचीत करते हैं, अपने वीरानापन को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। एक समय था जब इन कुओं पर बहुत चहल पहल रहती थी। दूसरी ओर इन कुओं का निर्माण भी बहुत जतनों द्वारा करवाया जाता था। यह जतन केवल राजा महाराजा द्वारा ही नहीं सेठ साहूकारों एवं विभिन्न जातियों के विशिष्ट महापुरुषों द्वारा भी किए जाते थे। इन सभी से भी महत्वपूर्ण योगदान उन महापुरुषों का है जो बड़े पूंजीपति न होकर भी जनहितार्थ हेतु पेयजल की व्यवस्था करते थे। बीकानेर में जहाँ भी कुएं विद्यमान हैं वहाँ उसके पीछे ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। कुएं से पानी भरना भी एक संस्कृति का हिस्सा ही थी। वर्ग भेद एवं जाति भेद का प्रचलन था, फिर भी सभी वर्ग बहुत ही शालीनता से अपने अपने हिस्से का पानी प्राप्त करते थे। आम जन के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी का भी इतना ही ख्याल रखा जाता था। जो व्यक्ति कुएं पर पानी निकालने हेतु नियुक्त है उसका तथा उसके परिवार के पालन पोषण हेतु भी उचित जमीन बाड़ी आदि का बंदोबस्त करना आदि सभी एक श्रृंखला की कड़ियां हैं। इन सभी कड़ियों द्वारा ही पाताल से धरातल तक पानी आना संभव हो सकता था। बीकानेर में कुएं के पास बाड़ी होने का उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। यहाँ कुआं सींचने यानी कुएं से पानी निकालने वाले का काम मुख्य रूप से माली जाति के लोग करते थे। यह माली सुबह एवं शाम दोनों समय इसी कुएं पर काम करता था और लोगों का पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करता था। इनको अपने परिवार के लालन पालन के लिए कुएं के पास रहने हेतु जमीन दी जाती थी तथा कुएं के पास कुछ जमीन दी जाती थी जहां वह सब्जी फल फूल आदि की छोटी मात्रा में खेती करता था। इस खेती को बाड़ी कहते थे। बीकानेर की बहियों में यह उल्लेख मिलता है कि कुआं सींचने वाले व्यक्ति को निःशुल्क पानी दिया जाता था। इसी प्रकार कुएं से संबंधित मंदिर में भी एक घड़ा पानी निःशुल्क दिया जाता था। यह सभी कार्य एक व्यवस्था का ही हिस्सा थे। सबसे बड़ी गंभीर चिंतन का विषय इन जल स्रोतों की भूमि पर अतिक्रमण है, इन पेयजल स्रोतों की समुचित देखभाल न होना। हालांकि मानव आबादी हमेशा जल स्रोतों के आसपास ही हुई है। जब तक आबादी थोड़ी थी तब तक जल स्रोतों का स्वास्थ्य ठीक था और आकार पर भी अतिक्रमण नहीं था। आबादी बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा रहवासों की आवश्यकता बढ़ने लगी। आम जन को इन जल स्रोतों की भूमि बहुमूल्य नज़र आने लगी और बस्तियों ने कुओं की सारणों को ही लीलना शुरू कर दिया। जिस तरीके से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई उसी गुणा में इन कुओं के आसपास की जमीनों में कब्जे होने लगे। कुएं के पास बने चौक एवं सारणों पर तो पूर्णतया विलुप्त ही हो गई और इनके साथ साथ कई कुएं भी रहवास हेतु भेंट चढ़ गए। कुओं के निर्माण से संबंधित कीर्ति स्तंभ जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिल सकती थी, यह स्तंभ लोगों के घरों में घर के बाहर बनी चौकियों में दबे पड़े देखने को मिलते हैं। हाँ, मानते हैं कि बीकानेर के काफ़ी कुएं अब पानी देने में असमर्थ होंगे, लेकिन एक समय था जब यही कुओं से हमारे पूर्वज अपनी प्यास शांत करते थे। हमारे मकान के निर्माण में इन्हीं कुओं का पानी उपयोग लिया जाता था। हमें सोचना होगा कि इन कुओं को कितने जतनों से बनाया गया है, कितने व्यक्तियों का परिश्रम लगा है एवं कितनी पूंजी। इन्हीं कुओं ने हमारी कई पीढ़ियों को पाला पोषण किया गया है।

0: आज अधिकतर कुएं गंदगी यानी अकूड़ी के ढेर बने हुए हैं, कचरे से सटे पड़े हुए हैं, मोहल्ले को गंदगी फेंकने का स्थान बने हुए हैं। ना तो इनके परिसर की कोई थाल ले रहा है और ना ही इन पर बने कलात्मक छतरियों एवं होदों की। समाज का क्या यही धर्म है कि जब तक हम किसी से कुछ मिलता रहे तब तक हम उसको पूजते रहें, जब उसकी आवश्यकता कम हो तब हम उसको भूल जाएं। हो सकता है आज इनका पानी सूख गया हो, लेकिन हमारी मानवता सूखनी नहीं चाहिए। हमें इन कुओं की वैभवता लौटानी चाहिए, इनको साफ सुथरा कर हमारे आसपास बिखरे इतिहास को संजो कर रख सकते हैं। इसी इतिहास से हम आने वाली पीढ़ी को जल के महत्व को बता सकते हैं।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी श्री संजय श्रीमाली की वार्ता जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके और वर्तमान में इसकी उपादेयता।

0: मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज आप सुनेंगे इसका 12वां अंक। वाचिका है श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत रामलेगा और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफर।

0: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 8 जून को आकाशवाणी ने गौरवशाली 90 वर्ष का सफर पूर्ण कर लिया है और इसी क्रम में हम आपको पिछले 8 जून 2025 से लगातार ऐसे श्रोताओं से रूबरू करवा रहे हैं जो आकाशवाणी के प्रेमी हैं, कार्यक्रमों को सुनते हैं और आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखने की बात भी कहते हैं। इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज के मेहमान श्रोता की बात करते हैं। आप हैं श्री अशोक कुमार नाई उर्फ पप्पू राम, आप सुजान देसर में रहते हैं। आपने रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को 10-12 वर्ष की आयु से ही सुनना आरंभ कर दिया था। अशोक कुमार जी से जब कार्यक्रमों और आकाशवाणी के उद्घोषकों का जिक्र किया तब आपने एक प्रमुख कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया, पुराने समय में रेडियो सेट कैसे होते थे और रेडियो सुनने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, आइए सुनिए।
1: 10-12 साल का था तब रेडियो सुनना पसंद करता था। अभी मेरी उम्र है 68 के करीब है, मदर सुनती थी, पिताजी तो चले जाते थे, रेडियो घर में रहता था ट्रांजिस्टर, फिर मदर भी सुनती थी और मैं वो 12:30 का इंतजार कर रहे थे, कब 12:30 बजे कब वो अब रेडियो स्टेशन की ट्यून चालू हुए, मस्तानी ट्यून, बड़ी अच्छी ट्यून आती थी, उसके बाद में गाने कभी कौन सी कोई आते अच्छे, मैं श्रोता था उस टाइम से, अच्छा श्रोता था। तो अमीन साइन साहब प्रसिद्ध थे, फर्स्ट क्लास देते थे, हमारे कभी कभी दोस्तों में शर्त लग जाती कि कौन सा गाना फर्स्ट आएगा, महीने के भी होता फिर वो साल भर में भी होता। तो एक बार मेरे को याद है मैंने कहा फिल्म राजकुमार का गाना पसंद आएगा फर्स्ट, आजा ऐ बार दिले बेकरारों में राजकुमार तेरे बिन रह न जाए, तो वो गाना फर्स्ट आया था उस टाइम।

0: बड़ी खुशी हुई, मेरे को खुशी हुई और सारे मित्र मेरे एक्सपर्ट सुनने वाले श्रोता थे सारे, हम बचपन में फिल्म भी देखते थे, तो पुरानी फिल्म हम ज़्यादा देखते थे, वो 12 से 3 बजे तक आती थी, 3 से 6 तो नई वाली फिल्म आती थी, पहले हमारे उम्र से पहले 50 की फिल्में हैं ना, तो 65 की 60 वो आती थी, वो हम देखते थे, सारे टीम थी हमारी, मेरा अश्विनी एक गुजर गया वो दोस्त था, एक आनंद गोड़ा था, एक गोर्धन व्यास था, मूलचंद जी थे, हमारे आसपास के जो मित्र थे ना बालकोटी, उन सारे फिल्म का शौक था बहुत, फिल्म भी देखते फिर वो गाने भी सुनते, कभी कभी तो गाने के ट्यून में पर्याय पर्याय मैं बता देता हूँ कौन सा गाना आएगा, वो एक तो वाल वाले रेडियो होते थे उसमें लाइट और जलती रहती एक, वो कभी लंबी कभी ऐसे ऐसे ऐसे होती थी, वो तो हमारे घर में नहीं था, पड़ोस में थे हमारे, वो था ट्रांजिस्टर था, वो सुनते थे, और उससे पहले बिना गाँव में किसी के घर था, तो हम रात को ये 8 बजे शुरू होता ना प्रोग्राम, तो सर्दी में 10-12 साल के थे, माँ और भक्ति कहाँ जा रहे हो, हमें दूर दूर दोस्तों के कई होता रेड है घर, वहाँ जाना पड़ता सुनने के लिए, सुन के आते।
1: अशोक जी ने अपने पैसों से पहला रेडियो सेट कब खरीदा, ये भी एक रोचक कहानी है।
0: मैंने सन 1978 में मैकेनिकल हूँ मैं, तो मैं 70 में काम सीखने लगा था, 8 साल बाद में काम सीख के मैंने 78 में घर का वर्ष को खोला, तो पहली जो मेरी कमाई थी ना उससे मैंने कंपनी का 310 रुपये में रेडियो खरीदा था कैम रोड से, फर्स्ट कमाई से मैंने रेडियो खरीदा, वो मेरे गैरेज में मतलब 24 घंटे चालू रहता था।
1: श्रोताओं, विविध कार्यक्रमों की तारीफ में आपने क्या कहा सुनिए।
0: 12 बजे तक लगभग प्रोग्राम आते थे, उसके बाद में ये 12:30 से एक गाने आते, उसके बाद बंद हो जाता और 2:30 से फिर चालू हो जाते, फिर वो विविध भारती चलता 3:30 से 5:30 तक चलता था विविध भारती, फिर शाम के और प्रोग्राम चालू हो जाते, रेडियो 10 बजे तक 11 बजे तक बार चालू रहता, मेरा सब सुनते प्रोग्राम। अभी अब व्यस्त रहने लगे, अभी मैं विविध भारती से बहुत प्रभावित हूँ, अभी कोरोना काल में मैं फ्री था तो घर पर रहता था, उसमें अभी 10 साल मैंने 15-20 साल रेडियो छोड़ना बंद कर दिया था, क्यों मैं धंधे वंदे में घर की परिस्थिति ऐसी उसमें बिजी रहने लग गया था।

0: विविध भारती के उद्घोषकों का नाम लेकर आपने ममता सिंह के बारे में उनकी हंसी को लेकर बहुत ही रोचक बात कही।
1: तो कोरोना काल में फ्री था ना, तो रेडियो ऑन किया और विविध भारती कार्यक्रम आते। ओहो, सवेरे से लेके शाम तक मेरे को तो बहुत ऊर्जा मिलती, मेरे को तो टॉनिक मिल जाता। ऐसे तो बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते। सवेरे तो भक्ति संगीत से शुरू होता, क्या बात है, लाजवाब प्रोग्राम आते। उसके बाद में आते पुराने गाने, फिर सैगल साहब का एक आधा गाना आता ही जरूर आता, अभी तक आता है। अभी बंद हो गया वो प्रोग्राम, लोकल चालू हो गए स्टेशन पर, कभी कभी आते हैं इसमें। तो दो तीन उद्घोषक है विविध भारती के, यूनुस खान जी हैं, तो मेरे पसंदीदा है। कोई ऐसे लगता है जैसे मैं फरमाइश कर रहा हूँ, वो वैसे ही गाने देते हैं। एक ममता सिंह जी है, क्या बात है, उनकी तो मैं हंसी का कायल हूँ, क्या लाजवाब हंसते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। गधे संदेश भी मोबाइल पे भेजा था मैं उनको, उनकी हंसी का बड़ा कायल हूँ मैं, बड़ी अच्छी हंसती है वो।
0: आकाशवाणी बीकानेर के कार्यक्रमों को भी आपने अच्छा बताया और संगीत से ऊर्जा मिलना भी स्वीकार किया।
1: बीकानेर के प्रोग्राम अभी तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, कृषि पे आते हैं और अपने लोक गीतों का आता है, अच्छा अच्छे प्रोग्राम आते हैं, कोई लोक धुन में भी बढ़िया आती है। अभी जैसे ये गाने देते हैं तो अभी अच्छे देते हैं गाने, सवेरे 7:30 बजे से आते हैं ना, 7 से लगभग चालू जाते हैं, 2 शिफ्ट में आधे पुराने आधे नए आ जाते हैं 7:30 बजे तक। मैं अभी 7:30 बजे ऑन कर लेता हूँ रेडियो, तो उसमें मेरे क्या है, इससे ऊर्जा मिलती है, संगीत से ऊर्जा मिलती है मेरे को। मैं रोमांटिक हो जाऊँ तो मेरे को औषधि याद आती है।
0: अब वो बात हम आपको सुनाने वाले हैं जो अब तक किसी भी श्रोता ने नहीं कही है। आप भी इसे सुनकर दंग रह जाएंगे कि आकाशवाणी से जिंदा रहते हुए तो हर कोई सुनना पसंद करता है, परंतु अशोक जी ने अपने जीवन के बाद क्या करना है कुछ इस प्रकार बताया।
1: मैंने मेरे घर वालों को बोल रखा है कि जब जिस किसी की डेथ होती है ना, तो यहाँ हमारे रीत है कि वो सत्संग कराते हैं, रात को जागरण कराते हैं। तो मैंने घर वालों को बोलो रखा है कि मैं कभी चला जाऊं तो मेरे पीछे क्या है, सत्संग नहीं करा कि ये सत्संग करानी है, फिल्मी गानों का, रेडियो का ये आयोजन 2-3 रखने हैं मेरी याद में।
0: पुराने गायक कलाकारों का जिक्र भी आपने अपने अनुभवों में किया और तरन्नुम में गाकर भी सुनाया। अशोक जी सैगल साहब को ज्यादा पसंद करते हैं।
1: मेरे को एक तो सैगल साहब के पुराने गाने पसंद है और वैसे रफी साहब, लता और मुकेश जी सारे गाने पसंद ही पसंद है, पर अभी जो ये यूनुस खान जी ये गाने देते थे ना सवेरे, बड़े चुन के देते, जिसमें एक दो गाने तो मेरे बड़े मन पसंद भाए थे। मैंने अभी लेटेस्ट सुने थे वो, एक तो थे वो जाने बहार गाना है, जाने

अक्षर उगले अच्छा लगता है मेरे, बड़ा मीठा लगता है। ट्यून आते हैं ना उससे मैं बोल लेता हूँ कभी कभी, तो फिल्म का नाम वो गाना पहले बता देते हैं, कभी बाद में बताते हैं गाने के बाद में, तो मैं पहले ही बता दूँ ये वो गाना है। प्राय प्राय मतलब 90% बता देता हूँ मैं। एकात पे तकदीर तुम उसे क्यों खपा है, एकात के

0: ने कहा।
1: संजल साहब थे, गिरधर जी व्यास थे, वो तो मेरे अभी मित्र बन गए थे। तो मैं मैकेनिक का काम करते करते अभी 10-15 साल टैक्सी चलाई थी मैंने, तो अचार्य चौक में खड़ा रहता था मैं। तो गिरधर जी व्यास आए मेरे पास टैक्सी करने के लिए कि वहाँ चलना है, ये छोटी वो है ना, वहाँ उनका घर है वहाँ एक। तो मैंने कहा भाई मैं तो वहाँ चलूँगा नहीं। क्यों? मैं तो पैसे डबल लेता हूँ, आने जाने का भाड़ा करता हूँ। तो आप कितने लोग? 40 रुपये में आपको ले जाऊँगा। फिर वो तो चले नहीं, उनकी मिसेज आएगी, उनको बैठाया कि मैं स्कूटर पर चल रहा हूँ, आप आगे नथुसर गेट पर रुकना। फिर मैं टैक्सी में पीछे पीछे गया, वो आगे खड़े थे, प्रभावित हुआ उनसे। वो ऐसे रखते थे बाल आगे से है ना, थोड़ा ऐसे रखते थे गिरधर जी। तो उन्होंने कहा मेरे को जान के? मैं कभी जाना नहीं। तो मेरा नाम गिरधर व्यास है। ओहो, मैंने कहा आप तो खूब गणा सुनाए हुए हमको रेडियो स्टेशन पे। तो कहा हाँ, मैं वही गिरधर व्यास हूँ। संतल जी तो हमारे मोहल्ले के पास में थे, मेरे घर बसड़ा को चौक में है पुराना। तो मैं जब स्कूल जाता था ना तो उनका घर आता था, तो हम बात करते थे, कभी उबारी में खड़े रहते थे, करे चंचल इसको देखा, चंचल इसको देखा, चंचल। क्या बच्चे थे ना उस टाइम, उनके चंचल जी के लड़के हैं वो, मेरी उम्र के हैं, वो मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, मेरी उम्र के हैं वो, तो मेरे से बहुत बड़े थे चंचल जी, पिता के समान थे मेरे। तो अंदर से उत्साह रहता कि रेडियो स्टेशन चंचल जी की आवाज़ आ रही है, अपने देख रहे हैं वो, कभी अपने मकान में बारी है वहाँ खड़े थे तो हम देखते, तो प्रभारी चंचल जी ऐसे ऐसे उत्साह रहता हमारे देखने का।
0: आकाशवाणी की बात हो और शास्त्रीय संगीत का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है?
1: बहुत प्यारा लगता है शास्त्रीय संगीत, बहुत प्यारा। शास्त्रीय संगीत से निकले है सारे, ये जो भी निकले शास्त्रीय संगीत से निकले हुए हैं, और मैन तो वही है। और वो तो जनक जनक बाजे पहल यार, बहुत सारे हैं मतलब। और जिसमें ये मन्नाडे जी की तो गाने पर क्या बात है ना, उसमें तो शास्त्रीय संगीत में तो एकदम छाप है उनकी।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की पूर्णता पर अपनी बात कहते हुए अशोक जी कहते हैं,
1: आकाशवाणी के लिए तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। अभी तो आकाशवाणी का प्रोग्राम है ना, गृहणियों के लिए, बच्चों के लिए, हम देशों के लिए साफ सुथरे प्रोग्राम आ रहे हैं, और बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं, साइड इफेक्ट नहीं है कोई, जैसे मोबाइल का टीवी का है ना, उसमें ये साइड इफेक्ट नहीं है कोई, ना तो कोई एड्रेस है, ना कोई एड्रेस है, तो भी तो शुद्ध एडवर्टाइज है, कोई ऐसा नहीं है मतलब। और अब तो हर विषय में अच्छा बोल रहे हैं, कृषि भाइयों के लिए, अपने लोकगीतों के लिए, क्या और अच्छा अच्छा कह रहे हैं, अभी तो मतलब एनर्जी दे रहे हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पुराने श्रोता श्री अशोक कुमार नाई उर्फ पप्पूराम। आपने अपनी यादें और अनुभव हमें बताकर ये साबित कर दिया कि आकाशवाणी ने हमें क्या दिया और वर्तमान में भी दे रहा है। श्रोताओं, इस अंक के सफर को हमें यही विराम देना होगा। आने वाले मंगलवार को इसी समय हम फिर से उपस्थित होंगे। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेघा की, और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, वाचिक अति श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा और संयोजन श्री अमित सिंह का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान

0: करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। यमुना जल परियोजना के एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पीने के पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। ये डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के साथ भी साझा कर दी गई है। प्रदेश के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे के भीतर बने निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जा रहा है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा के मामले को लेकर पूरी तरह सजग है।
1: पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी कतर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन शिप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहाँ अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
0: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ये समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। श्री बेढ़म ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति संभाग स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इसके अलावा आम नागरिक वेबसाइट के जरिए भी अपने सुझाव समिति तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश को नई दशा और दिशा मिलेगी।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल

0: और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह नेफेड के निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे। हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई हज नीति 2027 जारी की। इच्छुक लोग भारतीय हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच यात्रियों के कोटे का अनुपात 70-30 का रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी, जबकि 52,000 से ज्यादा सीटें निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा तय समय सीमा का पालन करने और तैयारियां समय पर पूरी करने के उद्देश्य से इस बार हज नीति की घोषणा जल्दी की गई है। प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना बनाई गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय संहिता डैशबोर्ड पर राजस्थान के प्रदर्शन और स्कोर्ड कार्ड की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कल ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। जयपुर में महल रोड की तर्ज पर अब न्यू सांगानेर रोड और सीकर रोड पर भी यू टर्न आधारित सड़कें बनाई जा रही हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाना और यातायात को निर्बाध बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि यू टर्न का ये प्रयोग सफल रहता है तो इस साल के अंत तक शहर के लगभग 21 प्रमुख ट्रैफिक चौराहों यानी जंक्शनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
1: हम लगभग यू टर्न पैटर्न के ऊपर बेस के ऊपर ही लगभग 21 ट्रैफिक जंक्शंस को हम बंद कर पाएंगे। साथ में हम और तरीके के भी बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोगों को अगर लेफ्ट जाना है तो उनको रेड लाइट पे खड़े ना होना पड़े। एक हमने प्रयास यहाँ पे करा था रामबाग सर्कल के ऊपर और बाकी शहरों में भी अब हमने यहाँ जेडीए सर्कल पे जेडीए चौराहे पे भी किया है। इसके साथ साथ हम लगभग 15 जुलाई के आसपास हमने 24 जंक्शन चिन्हित करे हैं, जहाँ पे हम जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, वहाँ से देख के कैमरा से देख के ही लोगों को हम वार्न करेंगे। अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है या स्टॉप लाइन के आगे आ रहा है या बिना हेलमेट के कर रहा है तो हम अपने स्पीकर के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 और 24 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री सतीश देहरा के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री सतीश देरा के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मिडी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए सुबह 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1312 अंक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथाबाद।

हजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे, तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं।
अगस्त 1999

0: 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
1: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
0: अरे क्या करेगी इनका तू है?
1: क्या करूँगी, गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
0: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बसंती बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी

बसंती की। पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से, है ना? बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में

0: आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
1: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
0: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो। चलो
4: चलो
3: चलो,
4: हाँ
3: जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1312वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:38 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है राजा रानी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी, जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।

0: 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है हटाफट दौड़े दौड़े आए वो, और उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिनाई, काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम इनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सिखाई है। काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इस

0: के उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है
1: जी।
0: तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और शिशु में भी गए हैं, तो वहां से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहां?
0: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहां से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहां पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है उकेरा तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया, और राजस्थान के हैं और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहां पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन दिया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहां बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
0: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी जी,
0: तो वहां पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है या शिल्पियों को, इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
0: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
0: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे दो बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
0: हाँ, भविष्य सही है क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बताए?
0: हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
0: हाँ, तो लोग 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 1 साल में कारीगर बन जाएगा वो, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसमें मास्टर प्राप्त उनके पद पर जो है वो चुने, हमें चुने या किसी को चुने, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाए उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट मैम के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहाँ मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहाँ पे, तो वहाँ कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहाँ पर रहा।
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले अब तक?
0: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। अब मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरत मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
0: 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई रहती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर

0: अपनी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर
1: जाएगा जी,
0: तो अपना रोजगार जो है खुद चला सकता और फेमस भी हो सकता, फेम भी पा सकता
1: जी। मुझे एक साहब मिल गए थे वहीं विदिशा प्रोग्राम में, तो आए उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ। तो बहुत खुश हुए वो।
0: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खास तौर से, तो उनके लिए क्या कहने चाहे?
1: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में। तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा, रुचि है उसको कंप्यूटर के काम में। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
0: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से ही, ये जिंदा रहे।
1: ट्रेनिंग सेंटर कौन ले चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो,
0: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया जाए।
1: जाने इसके उद्योग है
0: जी जी,
1: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
0: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूँगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है, जो कि वहाँ से हमें काम सिखाया हमें लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा। और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
0: अच्छा,
1: हम बराबर काम कर रहे हैं। बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना।
0: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
1: ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाएगा, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाएगा। तो हमारी मिसेज ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहे, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, हम काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
0: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सोनू निगम, अरिजीत सिंह और साथियों का गाए हुए गीत। फिल्म का नाम है बॉर्डर 2।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 11 बजे हैं, अब प्रस्तुत है विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला में पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज बातचीत होगी श्री ब्रजलाल भट्ट से।

0: के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन, खासकर इसी डेटेक्स।
1: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया। तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं बहुत दिन तक। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के, जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए हैं शरीर के।
0: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई थी?
1: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या

0: उठना बैठना, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग, मैं तो खैर टूट ही गई थी, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
1: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सरवाइव किया, कौन सी वो शक्ति थी?
0: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है ज्यादा। और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया। नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश सी घर के कोने में बंद हो गई थी बिल्कुल। और डिप्रेशन, जो उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे।
1: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
0: ऐसा है, मेरे पिताजी को भी मतलब सितार बजाते थे, तो उनको संगीत बहुत पसंद था और मेरा गला वाकई बचपन से बहुत अच्छा था। तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदिश, कभी कुछ सिखा जाते थे, अच्छा लगता था। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ऐसा सोच के तो नहीं शुरू किया था। यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से PhD तक की पढ़ाई मैंने BHU से की। और बराबर स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला, मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं PhD करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी, तो फिर BHU में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहां अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। तो बच्चों के साथ रम गई, क्लासेस लेना, और फिर वहां फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ, पार्टनरशिप भी किया वहां। और उस संगीत की ही वजह से फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर रीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहां।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा BHU में शिक्षक के दौरान आपको?
0: BHU ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, मीन्स जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो बाकी आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को PhD भी कराई मेरे अंडर में, तो वो लोग मुझे कभी उन्होंने टीचर मुझे समझा ना मैंने समझा कि स्टूडेंट हैं, अपने बच्चों की तरफ वो समझते, और वो लोग की मातृवत, और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, बड़े बड़े जगह सभी लग चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन तो प्यार करते हैं उनका, फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, क्योंकि देखिए उतने बड़े संघर्ष को मैं आपको ना 10 मिनट में बता पाऊंगी, तो सालों का संघर्ष है
1: बिल्कुल।
0: और

0: करूंगा। तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि मैंने भी इस तरह, आप सोचिए मैं गलियों में रहती थी, लेकिन ये लगन थी, माँ बाप की प्रेरणा थी, नहीं तुम्हें कुछ करना है, किसी लक्ष्य पे पहुंचना है, तो वहां से पैदल तक आती थी मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह की यातनाएं सहनी पड़ी उस बीच। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डाली और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बॉम्बे में बनी और महाराष्ट्र में वो पूरे प्रदर्शित भी की गई, और अब हिंदी रूपांतर उसका हो रहा है, डबिंग हो रही है, चल रही है, शायद मार्च लास्ट या अप्रैल तक बनारस में भी आ जाएगी
1: देखने को मिलेगी।
0: जी, देखने को मिलेगी सभी को। और सीरत जो है वो उपलब्ध है जो भी उसको पढ़ना चाहे। अरे
1: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: वही बहुत मायने रखता है, बहुत मायने कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं, मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, जरा सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है तुरंत, लेकिन वो भी झेला, सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ, और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है, मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, और फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे आप?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है, एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है, कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है ना, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर ये तो चमड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, वो ये विशेष रूप से जो विकृति आई, जो जो कि बचपन से ही शुरू हो गई, तो मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और तो ये भी मुझे संबोधन सहना पड़ा, उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी, क्यों नहीं देखेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे, कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए,
1: बिल्कुल
0: तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता, आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है भैया। आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे, और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित है, लोगों के लिए प्रेरणा बने, है ना,
1: क्या बाकी रह गया आज करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है, और मेरा तो ये अनुभव भी है कि अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी।

0: भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी। मैं घर पे भी निःशुल्क शिक्षा देती हूँ बच्चों को, इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये तो अचीवमेंट मैंने तो पद्मश्री मांगा नहीं था, अपने आप आते गए, मिलते गए। तो ये होता क्या है, उससे एक जो करने का उत्साह है
1: बढ़ता
0: उसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि नहीं चलो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज समाज भी पूछ रहा है, बुला के वो भी मुझे सम्मान देना चाहता है। तो आपका जो कर्म है वो आपको सब कुछ दिला सकता है। हाँ, इसलिए करते रहना चाहिए।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।

विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला आप सुन रहे थे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: पंकज उदास, अनुराधा पौंडवाल को आप सुन रहे थे संगीत फिल्म में। और लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को, ये फिल्म है अभिनेत्री।
1: हंसो मत, बोलो

0: जीवन में कई सपने भी होते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो समाज जो हमें सब कुछ देता है, उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपको इस वर्ष का पद्मश्री मिल रहा है जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
1: देखिए, अभी जो आपने बताया, मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है। जब हम स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन की बात करें, आध्यात्मिक सेवा की बात करें, फिर जहां मुझे आप मुबारकबादी देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो ये जो सेवा है इसका दर्जा थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स ऑफ कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं कश्मीर में, लगातार काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ। मैं ख़ास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है, मजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, तो उनको जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूथ को गले से लगाया, तो उन माइनॉरिटी कम्युनिटी में हमारे सिख बच्चे भी हैं, कश्मीरी पंडित बच्चे भी हैं, उनको समर्पित करता हूँ।
0: जी, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे स्टूडियोज़ में हैं और दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि आपका ये सफ़र समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
1: देखिए, मैं एक हिसाब से कहूँ गाँवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और ख़ास तौर पर 1990 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं, ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े।
0: जी,
1: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट्स हैं विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
0: जी,
1: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे में एक्टिविटी चलती रहती है। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है
0: जी।
1: लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज़ के साथ जो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़ें, जिससे जो कश्मीर में पीस प्रमोट हो, जिससे कश्मीर में नॉर्मलसी प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
0: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, एक परिवार है और हम परिवार के सदस्य हैं, और जब हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं तो किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि किन किन एक्टिविटीज़ के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता, आपने सही कहा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहाँ काम करते हैं। तो ये जो मैंने अभी एक्टिविटीज़ आपको बताए, नेशनल एक्टिविटीज़ में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है
0: जी।
1: आपको छोटा सा भारत नज़र

0: ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है और लीजिए अब सुनिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला में पीपल्स ऑन द पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: जीव है उस समाज का अंश है जो उसे वातावरण देता है, माहौल देता है पलने बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने जीविका उपार्जन के लिए और अपने सपनों को सच करने के लिए। जी हाँ, हम उसी समाज का हिस्सा हैं जो हमें सब कुछ देता है और हमारे जीव

0: मुझे कुछ ना कुछ करना
1: जी
0: चाहिए इसके
1: भट्ट
0: लिए।
1: साहब, आखिर में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है, खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था?
0: देखिए, एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था। कहीं से भी, बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे,
1: जी
0: पिटाई भी होती थी, वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, हमारी एज में पेरेंट्स थोड़े ये पढ़ता है, खुद करेगा,
1: जी
0: खुद करेगा। ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर।
1: जी
0: नहीं,
1: यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
0: करेक्ट,
1: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं, दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
0: एक चीज और बताना चाहता हूं, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर। ये जो मैं कह रहा हूं, देखिए, इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इसमें कश्मीर में है, छुटपुट घटनाएं होंगी, लेकिन उनका जोश जो इस वक्त का है, चाहे मजॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा हो, उसमें सिख भी है, कश्मीरी पंडित है, उनका जोश, वो मार्गदर्शन करेंगे, उनका जोश और पेरेंट्स का होश
1: जी
0: जब एक यूनिसन में आएगा, कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम इसको समुद्र को कोजे में बंद नहीं करना चाहते।
1: जी
0: विश्व गुरु की तरफ भारत जा रहा है,
1: जी,
0: और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना है।
1: जी तो भट्ट साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश आज आपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शकों को दिया, उस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, अमल करेंगे और एक बार फिर से पूरी तरह जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल इलाका बनाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज जो भट्ट साहब के साथ जो बातचीत हमने की और जो संदेश इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचा, उस पर हम सब अमल करेंगे। नमस्कार।
2: विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज बातचीत हो रही थी श्री ब्रजलाल भट्ट से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मुकेश के साथ आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। ये फिल्म थी शोर। और लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और उषा मंगेशकर को। फिल्म का नाम है दिल की राहें।

लता मंगेशकर और मनमोहन के गाए लैला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। लीजिए अब सुनिए हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हमारी दूसरी सभा में रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, इसे प्रस्तुत करेंगे श्री सुधीर कुमार व्यास।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। सुगम संगीत होगा 7:45 पर।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य। आज चर्चा होगी खेजड़ी का पर्यावरण आंदोलन विषय पर, और चर्चा का विषय रहेगा बीकानेर में प्याज भंडारण अनुदान योजना 2026। इसके अलावा चर्चा होगी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कीट नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप, लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

6:05 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे एक ही संगीतकार कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज प्रस्तुत करेंगे रिपुदमन सिंह और प्रियंका सोनी। युववाणी में आज की बात का विषय रहेगा फेफड़ों और हृदय के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, और लघु जानकारी का विषय रहेगा कौशल विकास और रोजगार, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित दिनचर्या, डिजिटल इंडिया और युवा, स्वच्छ पर्यावरण में युवाओं का योगदान और रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी होगा।

1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा रहेगी इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, नारी शक्ति वंदन से महिला नेतृत्व तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि, एकल महिलाओं के आर्थिक अधिकार और पुनर्वास, इन विषयों पर आज चर्चा होगी। और ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी रेखा आचार्य और सुरभि बोहरा। ये था कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम।

0: हो?
1: मूंखे ऐं रमेश खे दफ़्तर ऐं असां सभई पंहिंजे पंहिंजे मकाम ते सही वक़्त ते पहुची सघूं इन ख़ातिर न ॾिसजण वारी जंग लड़ी रहिया हुआसीं। मां छो त घर दयाणी आहियां त ज़ाहिर आहे मुंहिंजे ई कुल्हे ते सभिनी जी बंदूकुनि जी नार टंगियल हूंदी आहे। मूंखे अॼु ताईं इहा ॻाल्हि हरगिज़ समुझ में न आई आहे त मर्द ऐं ज़ाल ॿिन्हिनि जो हिकु ज़हिरो मन प्राण ऐं शरीर हूंदे बि ज़ालुनि जे कुल्हे ते ई भार छो? हर ॻाल्हि हर ज़िमेवारी रस्मुनि ऐं रिश्तनि खे निभाइण जी। इन खां पोइ बि चवंदा आहिनि ज़ाल अबला आहे, कमज़ोर आहे, खेसि हिकु मर्द जे सहारे जी ज़रूरत आहे। ख़ैर, मथे खे हिकु झटको ॾेई पंहिंजी सोच ते रोक लॻायमि। झटपट उथी ॿारनि ऐं रमेश जी ड्रेस ऐं ॿियो ज़रूरी सामान संदन बेड ते रखियो। हाणे वञी रधिणो संभालियो। हिकु स्टोव ते सुकल भाॼी चाढ़ी त ॿिए ते चांहि, टे ते खीर ऐं चोथे ते राति जी ठहियल रस वारी भाॼी गरम करण रखी। इन विच टोस्टर खे बि संदसि कम ते लॻाए मखण अची डाइनिंग टेबल ते रखियुमि। सभई तयार थी अची डाइनिंग टेबल ते मिड़िया। खेन टोस्टर ते मखण लॻाए खीर ऐं चांहि सां ॾेई वापसि रंधिणे तरफ़ ढुक पातमि। अञा बि हिकु स्टोव उते कमु करे रहियो हो। टिफिन त पैक करणा हुआ। मूंखे हमेशह हिकु शिकायत रही आहे, न ॼाण कंहिंसां त नेठि मूंखे सुकून सां वेही सुबुह जी ॿ ढुक चांहि पीअण नसीब छो न आहे? टिफिन पैक थी चुका हुआ, ॿारनि जा बैग पिण तयार हुआ। ईश्वर मूंखे ॿ सधोरा ऐं समझू ॿार ॾिना आहिनि। राति जो ई पंहिंजा बैग पाण तयार करे रखंदा हुआ ऐं पंहिंजा कम पाण करण जी कोशिश कंदा हुआ। हा, लापरवाह रमेश जे ऑफिस बैग खे ठाहिण में मूंखे वधीक महिनत करणी पवंदी हुई ऐं रोज़ाना सुबुह जे हंगामे जी वजह अक्सर इहा ई हूंदी हुई। जॾहिं मां सभिनी खे पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुचाइण ख़ातिर चक्री थी पई फिरंदी हुअसि, तॾहिं मुंहिंजो हमसफ़र पंहिंजी बॉडी फिटनेस लाइ बाग में फुटबॉल खेॾणु हलियो वेंदो हो। मुंहिंजे हमदम जो दम न निकिरे, इन लाइ मूंखे पंहिंजो दम लॻाए हर हिकु कम लाइ मुस्तैद रहणो पवंदो हो ऐं भॼ ढुक जो इहो सफ़र ई मुंहिंजे गुस्से जो सबबु हो। अरे, घड़ी टुपा ॾेई अॻिते वधी रही आहे। ऑफिस वञण में देरि थी रही आहे ऐं अञा त पाण तयारु थियण सां गॾु बाबा जो खाधो पाणी संदन कमरे में रखी खेन संभालणो बि हो। ऑफिस लाइ भॼी करे बस पकड़ी। शुक्र मालिक जो वेहण लाइ सीट मिली वई। ख़बर न आहे छो, पर ख़्याल अॼु टुपा ॾेई ॾेई शायदि मूंखे विंदराए रहिया हुआ। गुज़िरियल ॾींहं सुहिणा ऐं शानदार। नई नई शादी, रमेश जो प्यार, सावरनि जो लाड, नौकरीअ जो त को बि झंझट न। रातूं चांडोकियूं, ॾींहं सुनेला, सुबुह जो प्यार सां रमेश खे ऑफिस मोकिलण, शाम जो संदसि बेसब्रीअ सां इंतज़ार करण ऐं रोज़ाना शाम जो किथे न किथे घुमण फिरण लाइ निकिरी वञण। न काई चिंता, न हैरान कंदड़ भॼ ढुक। पर इहे सुहिणा ॾींहं मुंहिंजे पलांद में घणो वक़्तु आबाद न रही सघिया। जीअं ई जया अची मुंहिंजी झोली पंहिंजी ममता सां भरी, तीअं ई उन्हनि सुहिणनि ॾींहनि धीरे धीरे करे टाटा बाए बाए करण शुरू कयो। पहिरियों बार हुनजी मोहबत ऐं लाड रमेश जी पघार खे कटण शुरू कयो। घर बजट जो बैलेंस लोॾा खाइण लॻो ऐं पंहिंजे प्यार खे सहारो ॾियण जी पेशकश मूं अॻिते वधी रखी। जॾहिं मूं रमेश खे चयो त छो न मां

नौकरी कयां त घर ख़र्च हलाइण सवलो थींदो। पहिरीं त रमेश मना कयो, पर पोइ नेठि मञी वियो। थोरी कोशिश सां ई हिकु मल्टीनेशनल कंपनीअ में मूंखे नौकरी मिली वई। अमा तॾहिं हयात हुई त जया खे संभालण सां गॾु घर जा केतिरा ई कम हुननि हवाले थिया ऐं ज़िंदगी वरी मज़े सां गुज़रण लॻी। चइनि वरियनि खां पोइ राजा पैदा थियो। ख़र्चनि वरी अंगड़ाई वठी मूं मथे कयो। ॿारनि जे भाग सां असां ॿिन्हिनि खे प्रमोशन मिली ऐं ज़िमेवारी पिणु। असीं ख़ुशि हुआसीं। जया ॾहनि ऐं राजा छहनि वरियनि जी उमिरि जा अची थिया। ओचितो ई हिकु राति अम्मा खे साइलेंट अटैक आयो, जंहिं अम्मा खे असां खां जुदा करे छॾियो। बाबा पंहिंजे हमसफ़र जो विछोड़ो बर्दाश्त न करे सघियो ऐं वञी खट पकड़ियईं। बाबा जी दुनिया संदन बेडरूम ताईं सुसी पई। हाणे ख़र्चनि में बाबा जी दवाऊं ऐं डॉक्टरनि जी फीस पिणु शामिल थी विया। अम्मा ॿारनि खे अहिड़ा त सुठा संस्कार सेखारे वई हुई जो हुननि कॾहिं बि मूंखे या रमेश खे कक न कयो या न का फालतू जी फरमाइशी कयूं। पर महांगाई त महांगाई आहे न, कंहिंजे बि वस न अचण वारी। जेका शइ कल्ह ताईं 10 रुपयनि जी मस मिलंदी हुई, अॼु वञी 100 रुपयनि जी चोट चढ़ी वेठी हुई। रमेश जे शाम जो वक़्तु जेको ॿारनि ऐं बाबा लाइ हो, सो वञी आड़े पाड़े जे ॿारनि हवाले थियो, उन्हनि खे ट्यूशन पढ़ाइण, राणो कमाइण ख़ातिर। मुंहिंजे मन में बि आयो त छो न ऑफिस जो एक्स्ट्रा कमु पकड़ियो वञे त वधीक पैसनि जी आमद थींदी। पर घर जा न खुटण वारा कम अची आॾो बीठा। रमेश जो शेड्यूल त हुन जे सुबुह जो जागण खां वठी राति जे सुम्हण ताईं मिनट टू मिनट पैक हो ऐं पंहिंजे शेड्यूल में का बि दख़ल अंदाज़ी खेस बर्दाश्त न हुई। त जेकर मां कंहिं बि एक्स्ट्रा कम जी पेशकश क़बूल कयां त पंहिंजे लेखे सोचियुमि, कंहिं बि कम में घटिताई मुमकिन न आहे। पर आयल कम जी ऑफर एतिरी त शानदार हुई जो हिन खे छॾण लाइ मन बि न थे मञियो। सोचींदे सोचींदे ख़्याल में आयो त सुभाणे छंछरु आहे, छुटीअ जो ॾींहुं। घर जी साफ़ सफ़ाईअ लाइ जेका शिवानी ईंदी आहे उन खे चई थी ॾिसां त जेकर मूंखे छंड फूक ऐं रधिणे जे कमनि में थोरो हथु वंडार आहे त मूंखे कम जी मदद मिली वेंदी ऐं खेसि पैसनि जी। महांगाई त नेठि हुन खे बि परेशान करे रखियो हूंदो न। इहो सोचे करे मां ख़ुशि थी वियसि। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो शिवानी अची पंहिंजे कम ते लॻी। वांदी थी त हुन खे पंहिंजे बेडरूम में वठी आयसि। पंहिंजी ॻाल्हि हुन अॻियां रखी, पर हुन जो नाकार वारो जवाबु ॿुधी अजब में पइजी वियसि। पुछियोमांसि, पंहिंजे कम मां वांदी केॾी महिल थींदी आई, घर कंहिं महिल पहुचंदी आई? चयई, ॿ अढाई त लॻी वेंदा आहिनि दीदी, इन खां पोइ शाम जो बि त कम ते वेंदी हूंदी आहे न, माण्हुनि जे ॾींहं जा बासण मलण। न दीदी, घर पहुचण खां पोइ मां किथे बि न वेंदी आहियां, सभई कम मंझंदि ताईं ख़तमु कंदी आहियां। त शाम जो त वांदी आई न, पोइ मना छो थी करी? सुठो पैसो ॾींदीसीं, छंड फूक जे कम खे भले न कर, पर रंधणे जे कमनि में त मदद करे थी सघी न। शिवानीअ नरमाईअ सां वरी मना कई, न दीदी, न थी सघंदो। पैसा मिलंदा पंहिंजे गुड़िया खे वधीक सुख ॾेई सघंदीअ। शिवानीअ खिली करे वरंदी ॾिनी, पर दीदी, इहा रक़म मूंखां मुंहिंजा ॿिया सुख खसे वठंदी। थोरी साई पटे चयईं, मंझंदि जो 2 बजे रतन बि घर अची वेंदो आहे, गुड़िया सां अची रांदि रूंद कंदो आहे। घर पहुची सनानु कंदी आहियां, मूंखे रंधिणे जे कमनि में रतन मदद कंदो आहे। पोइ मंझंदि जी रसोई खाई थोरो आरामु। 5 बजे हू वापसि पंहिंजे कम ते हलियो वेंदो आहे। थोरो शर्माईंदे चयईं, मूंखे साड़ी पाए सिंगार करण जो शौक़ु आहे, रतन खे बि मुंहिंजो इहो सिंगार वणंदो आहे। बसि उन जे वेंदे ई राति जी मानीअ जी थोरी घणी तयारी करे पाण तयार थी वेंदी आहियां। गुड़िया जी नंढड़ी आङुर पकड़े खेसि पार्क में खेॾाइण वठी वेंदी आहियां। घुर्ज हूंदी आहे त बाज़ारि वञी सामान वठी ईंदी आहियां या के मिट माइट सां बि मिली ईंदी आहियां। त ॿुधायो न दीदी, मूंखे टाइम किथे बचियो? ज़रनि पैसनि जे लाइ मूंखे इन्हनि सभिनी सुखनि खां पाण परे करणो पवंदो, जेको मां नथी चाहियां। रतन ऐं मां मिली जेको बि कमायूं था तंहिंमें ख़ुशि आहियूं।

0: ऐं सुखी बि। चवंदे शिवानीअ जी सांवरी शिकिल ते आयल चमक ॼण हुन जी सूंहं वधाए छॾी। मुंहिंजे बेडरूम में जिते असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं पियल आदमकद आईने ॼण मूंखे सॾु कयो। हुन ॾांहुं निहारींदे मूंखे पंहिंजी सुहिणी शिकिल नज़र आई, जिते थक, चिंता ऐं चिंता जा कारा लीका, शिकिल ते आयल गुंज सभु ॾिसण पिया आया। लॻो ॼण आईनो मूंखे सॾु करे असलोकी सुख जी शिकिल ॾेखारे रहियो हो, ऐं शिवानीअ जी शिकिल ते आयल सुख जी चमक उन जो साथ ॾेई रही हुई।
1: सुख साथियों, हींअर तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ही कहाणी, जंहिंखे पेश करे रही हुई डॉक्टर गायत्री। हाणे अचो त गॾिजी ॿुधूं था वार्ता गोवर्धन भारतीअ जो रचना संसार। वार्ताकार आहिनि डॉक्टर हासो दादलाणी।
2: श्री गोवर्धन भारती न फ़क़त सुठो शायर आहे, मगर मक़बूल लेखक, गायक, संगीतकार, अदाकार, हिदायतकार ऐं चित्रकार पिणु आहे। संदसि पूरो नालो श्री गोवर्धन आसूमल महबूबाणी आहे। हुन जो जनम नंढे ॻोठ आराज़ी तालुको सेवण ज़िला दादू में 13 जनवरी 1929 में हिकु ग़रीब मास्तर जे घरु थियो। छटीअ जो नालो गिरधारी निकितो हुउसि, पर माइट खेसि गोवर्धन करे पुकारींदा हुआ। नंढे हूंदे गोवर्धन नियायत चिलविलो, खिलणो, हरकती ऐं तीसरो राग ऐं नाच संदसि नस नस में समायल हो। गोवर्धन भारती प्राइमरी तइलीम आराज़ी ॻोठ में वरिती। संदसि वॾनि जो संगीत ऐं अदाकारीअ सां गहरो लॻाउ हो, इन करे ॻाइण त गोवर्धन भारतीअ खे वरसे में मिलियो। 6 सालनि जी नंढी ॼमार में यकतारो खणी स्कूल जे स्टेज ते सूफ़ी कलाम ॻातईं, पोइ हू आराज़ीअ मां टलटी वियो। उते पढ़ाई कंदे नचण बि सिखियो, साज़ ऐं संगीत सां नृत्य कंदे माण्हुनि खे मोहयई। 1 साल बैदि खेसि हैदराबाद मोकिलियो वियो। उते गुरदासमल हिंदू हाई स्कूल में दाख़िल थियो। तइलीम दौरान हू नाटकनि में भाग वठंदो रहियो। स्कूल जे स्टेज ते तारामती ऐं मूमल बणिजी अहिड़ो त दिलसोज़ एक्टिंग कंदो हो जो दर्शकनि खे रुआरे छॾींदो हो। 1946 में हिन मैट्रिक पास कई, सॼी सिंध में ॿियों नंबर आयो। संदसि पीउ जी मर्ज़ी हुई त पुटु इंजीनियर या डॉक्टर बणिजे। वॾे भाउ जी आरज़ू हुई त हू नृत्य सिखे या चित्रकारी विद्या सिखे, हिकु महान कलाकार बणिजे। सिहत साथ न ॾियण करे के साल बीमारीअ सभु बिस्तरे ते दाख़िल रहियो, तंहिं करे हैदराबाद छॾे वॾे भाउ वटि लाहौर रहियो। डॉक्टरनि ॻाइण नचण हर क़िस्म जे हुनर खां सख़्तु मना कई। उते हिन पूरो आराम कयो। हू बिस्तरे ते आराम कंदे टैगोर, शरद, प्रेमचंद, सुदर्शन वग़ैरह जा किताब पढ़ंदो रहंदो हो। लंबे अरसे जे इलाज खां पोइ संदसि तबियत ठीकु थी। रानी सबबि लाहौर में फसाद शुरू थिया, तंहिं करे भारती साहिबु घर जे भातियुनि सां गॾु अजमेर आयो। शुरूआती दौर में हिन मास्तरी कई, पोइ रेलवे में क्लर्क बणियो। 1953 में आगरा यूनिवर्सिटीअ मां BA पास कयईं। श्री भारती अकादमी जे सिंधी सलाहकार बोर्ड ऐं राजस्थान जे सिंधी अकादमी जो मेंबर रही चुको आहे। भारतीअ जे जीवन ते संदसि घर जे वॾनि जो गहरो असर पियो आहे। नंढे हूंदे संदसि माउ गुज़ारे वई, हू ॾाॾीअ वटि पलियो। हुन जी ॾाॾी स्कूल में हेडमास्टरणी हुई। उहा ॻोठनि में ज़ालुनि सां धर्मी नाटक कराईंदी हुई। भारतीअ जे पिता ऐं सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे ॻाइण वॼाइण, नाटक, नृत्य, चित्रकारी लिखण जो शौक़ु हो, तंहिं करे नाटक करणु, ॻाइण वॼाइण इहे सभु भारतीअ खे वरसे में मिलिया। भारतीय ज़िंदगीअ जी हिकु पहिरीं रचना लिखी, जा अंग्रेज़ीअ में लिखियलु हिकु बाल कविता। हिन पहिरीं सिंधी बाल कविता 1946 में लिखी, जेका गुल फुल ॿारनि जे रसाले में छपी। हक़ीक़त में श्री भारती साहित्यिक क्षेत्र में 1948 खां क़दम रखियो। उन वक़्तु राजनैतिक हालतूं बदिलजी चुकियूं हुयूं। मुल्क जो एतिहासिक विरांगो थियो ऐं सिंध पाकिस्तान ॾांहुं हली वई। ॿियनि साहित्यकारनि वांगुरु भारतीय खे वतन खां विछड़ण जो गहरो असरु थियो। दर्द भरी दिलि जा उदमा लफ़्ज़नि जो रूप वठणु लॻा ऐं हिन लंबी कविता जोड़े वरिती। अफ़सोस तुंहिंजो सिंधड़ी, ही हाल कंहिं कयो, उहा कविता इंदौर मां निकिरंदड़ नई अख़बार भारत भूमि में पहिरें अंक में छपी हुई। हर कंहिं लेखक या शाइर ते आयला साहित्यकारनि जो असरु रहे थो। भारती साहिब जो सिंधीअ जे तीर्थ बसंत नारायण श्याम फतेहचंद वासवाणी, हिंदीअ जे प्रसाद पंत निराला महादेवी ऐं प्रेमचंद, उर्दूअ जे गालिब इक़बाल फै

ऐं कृष्ण चंद जे साहित्य खां घणो मुतासिर थियो धार्मिक वीचार खां रामकृष्ण मिशन आनंद मार्ग आचार्य रजनीश जे पोइलॻनि सां लावाचार में आयो भारती साहब स्वभाव में ॾाढो निहठो ऐं सादो कुर्बानी ऐं निस्वार्थ जो अंग अथसि मेहनती जिंदह दिल खुश मिजाज सुभाव वारो आहे आदर्शवादी शख्स आहे भारती लगभग अध सदी खां सिंधी साहित्य जे सृजन में लॻल आहे कविता ऐं नाटक में संदसि ख़ासि दिलचस्पी रही तंहिंखां सवाइ हिन कुझु कहाणियूं ऐं मज़मून बि लिखिया आहिनि भारती हिकु बहुमुखी कलाकार आहे हिन साहित्य में कविता ऐं नाटक खां सवाइ कहाणियूं मज़मून बाल साहित्य जो बि सृजन कयो आहे शायर जे रूप में भारती वधीक सुञातो वञे थो हू चवे थो त लिखण मूं लाइ खोराक आहे ख़ुशी आहे कॾहिं त महीननि जा महीना लॻातार लिखंदो रहंदो आहियां कॾहिं दिमाग़ थकिजी पवंदो आहे त सुम्ही पवंदो आहियां साहित्य सृजन बाबति श्री भारतीअ पाण चयो आहे त शोरगुल खां मूंखे को असरु न पवंदो आहे दुहिल जी रिदम साज़ संगीत जो आवाज़ मशीन जी खटखट रेडियो लाउड स्पीकर जो आवाज़ रुकावट बदिरां मुंहिंजे मन में लय ऐं ताल पैदा कंदा आहिनि मुंहिंजा बहितरीन गीत साइकिल टांगो मोटर कार या रेलगाॾीअ जी सवारी या सफ़र वक़्तु मुंहिंजे अंदरि मां उभरी निकिता आहिनि मुंहिंजा के बहितरीन शहर बुखार या बीमारीअ जे वक़्तु अंदरि मां उभरी निकिता आहिनि गोवर्धन भारतीअ जे शहर जा किताब आहिनि कथा उॾेरे लाल जी काणो बघाणो लाटरी लखनि जी ओ रामा पीर तनाई ऐं कोड़ो दूं शीशे जा घर भारतीय गीतनि सां गॾु नज़ुम लाॾा लोलियूं साखियूं काफ़ियूं बैत रुबायूं ऐं ग़ज़ल आज़ादु नज़्म ऐं कई नई कविता ते कलम हलायो आहे भारतीय जे कविता जा छंद आहिनि जग मेड़िया टामे जा टुकड़ा मुंह मेड़िया गीतनि जा मोती शायर पाण खे अकेलो महसूसु करे दुखी थी आंसू वाहे चए थो सभिनी मुंहिंजी मोक ॾिठी आहे पर न ॾिठियूं कंहिं अखियूं आलियूं शायर हिकु हंधि लिखियो आहे कंहिंसां दिलि जो दुख न सलियां थो हाय पाण खे पाण छलियां थो भारतीय जे गीतनि में मेठाज आहे लोलीअ में भारतीय माउ जी ममता जो सुहिणो ज़िक्र कयो आहे ॼेठ जी बि पहिरीं आहे शांत गहरी गहरी आहे हिंदूरे में झूल झूल झूल प्यारा हिंदूरे में झूल झूल झूल सिंधी लोकगीत ऐं लाॾा भारतीय जो निरालो अंदाज़ ज़ाहिरु कनि था सखियूं सहजा गुलनि जी सजायो जानी जोड़ल वठी कुंवर आयो भारतीय जी दिलि में देशभक्तीअ जी भावना जा कोटा कोट गीत भरियल आहिनि असांखे जंहिं धरतीअ सां प्यार उन सां जान कबी निसार जवानो होशियार जवानो होशियार धर्मी कविताऊं बि शायर ओ रामा पीर किताब में लिखियूं आहिनि श्री भारती बीमारी सबब सेनेटोरियम में भर्ती हो सेनेटोरियम जे आज़मूदनि शायर जे ज़िंदगीअ में बदिलाउ आंदो हू सितारनि जी दुनिया जो त्याग करे धरतीअ खे हक़ीक़ी दुनिया में मोटी आयो हाणे मूं वटि फूल न आहिनि पोपट तोरे भंवर उॾी विया हाणे मूं वटि लुड़क न आहिनि भारतीय जे हिननि कविताउनि में नओ सोच ऐं नई वीचारधारा समायल आहे शीशे जा घर भारतीय जो बहितरीन शायरीअ जो किताबु आहे जंहिंमें वायूं गीत ग़ज़लूं समायल आहिनि हिन किताब ते श्री भारतीय खे 1990 में मर्कज़ी सेंट्रल साहित्य अकादमीअ जो इनाम मिलियो हिननि कविताउनि में भारतीय शीशे वांगुरु पंहिंजे नाज़ुक दिलि जा नाज़ुक जज़्बा भरिया आहिनि भारतीय ॿारनि लाइ सुहिणा गीत रचिया आहिनि जेके संदसि लातियूं किताब में छपियल आहिनि गोवर्धन भारती शायर सां गॾु हिकु बहितरीन लेखक तस्लीम कयो वियो आहे हुन नाटक एकांकियूं कहाणियूं मज़मून ऐं नावेल बि लिखिया अथसि संदसि कहाणियुनि जा मशहूर मजमूआ पीलो चंड लाल दाग पांधी पुराणो वाट नई संदसि पहिरीं कहाणीअ मां लेखक जा आशावादी वीचार ज़ाहिर आहिनि सूर जूं सौ सूरतूं संदसि पहिरियों नावेल आहे जो सेनेटोरियम में गुज़ारियल ज़िंदगीअ जे गुज़िरियल नावेल आहे श्री भारती नंढे हूंदे खां स्टेज सां जुड़ियल आहे स्टेज जी टेक्निक खां हू चङी तरह वाक़िफ़ आहे हिन ॿ वॾा नाटक उमर मारुई ऐं बिगड़ियल घर पब्लिक में ॾाढा पसंदि पिया हीउ हिकु कामयाब नाटक आहे जेको 1960 में रंगमंच ते कामयाबीअ सां थी चुको आहे संदसि एकांकियूं तूफ़ानी राति ऐं गैरत आहिनि कला जे क्षेत्र में भारती अदाकार संगीतकार ऐं नृत्यकार तौरु सुञातो वञे थो विरहाङे खां अॻु जे सिंधी नाटकनि में अदाकार थी कमु कयई हिंदी चाहे सिंधी नाटकनि में हिदायतकार थी कमु कयो अथई अॼु बि

0: सिंधी जगत में संदस अमिट छाप छडियल आहे।
1: गोवर्धन भारतीय जो रचना संसार साथियों हियर तमा बुधी रहया वा डॉक्टर हासो दादलाणी खा हिय वार्ता साथियों हाणा आनंद वठूता कविता पाठ जो जैखे पेश करे रहया हैं श्री मोहन उदासी।
2: पहली पेश आए एक गदल वर्क वैयजा वराय जीव्या गुदनी हुई सा गुदरी वई उनाइंदे लगर तडोर टूटी टूटनी हुई सा टूटी वई वर्क वई जा वराय जीव्या गुदनी हुई सा गुदरी वई रुख जमाने जो आ अबस थियो बणजनी हुई सा बणजी वई वर्क वई जा वराय जीव्या गुदनी हुई सा गुदरी वई पंड हयातीअ जो करे थकस पंड हयातीअ जो करे थकस कटजनी हुई सा कटजी वई दिल जी चाहत बीन सुझी का मरनी हुई सा मरी वई वर्क वई जा वराय जी विया गुदरनी हुई सा गुदरी वई। पेश आए बियो गजल गिदर जे शिकार लाए गिदर जे शिकार लाए शींह जो हथियार खणन घुर्जे शोक तबियत वारन खां भी एतरो कदे न रिजे बेमन जै जगह थिए जीत हार जो किसो बेमन जै जगह थिए जीत हार जो किसो कदम खणन खां अग हाल चाल सेक उते जो परख जे गिदर जे शिकार लाए शींह जो हथियार खणण घुर्जे थिए तनकीद संदे गुप्तगुओ ते थिए तनकीद संदे गुप्तगुओ ते भली जे बेसबब थिए जे तनकीद संदे गुप्तगुओ ते भली जे बेसबब बेकरारीअ खे ॾढ ॾेई सबर सां सभु ॿुधजे सबर सां सभु ॿुधजे गिदर जे शिकार लाइ शींह जो हथियार खणण घुर्जे बेशौरन जे ॿिज जी खोटी नाहे बेशौरन जे ॿिज जी खोटी नाहे दरब दर जे रुलन पाण खुद मक़सद ते पहुचण लाइ सोच समझ रखजे सोच समझ रखजे गिदर जे शिकार लाइ शींह जो हथियार खणण घुर्जे साब पवंदियूं समूरियूं चाहतूं मोहन अवल साब पवंदियूं समूरियूं चाहतूं मोहन अवल ॿिन बकरियुनि जे सुलह नीतीअ सां जे हलजे ॿिन बकरियुनि जे सुलह नीतीअ सां हजे हलजे शोक तबियत वारनि खां बि एतिरो न ढिजे गिदर जे शिकार लाइ शींहं जो हथियार करणु घुर्जे हिकु आज़ाद निदम पेश आहे जंहिंजो उनवान आहे डोर रांदि जा रांदीगर रांदि जा रांदीगर वॾियुनि वॾियुनि एशियंस गेम में डोल जूं शर्तूं पुॼाए इनाम खटंदा आहिनि रांदि जा रांदीगर वॾियुनि वॾियुनि एशियंस गेम में डोल जूं शर्तूं पुॼाए इनाम खटंदा आहिनि के मैराथन डोड़ में कठा थी डोड़ूं पाईंदा आहिनि के मैराथन डोड़ में कठा थी डोड़ूं पाईंदा आहिनि के विश्व शांतीअ जो संदेश खणी डोड़ंदा आहिनि हर को कंहिं न कंहिं डोड़ में शामिलु आहे हर को कंहिं न कंहिं डोड़ में शामिलु आहे मुंहिंजो पोटो बाग में डोड़ पाईंदे रांदि रूंद कंदे मूंखे चवे थो मुंहिंजो पोटो बाग में डोड़ पाईंदे रांदि रूंद कंदे मूंखे चवे थो बाबा तव्हीं बि डोड़ पायो न ऐं मां खेसि जवाबु थो ॾियां त हाओ पुटु मां बि डोड़ी रहियो आहियां मां बि डोड़ी रहियो आहियां पर मुंहिंजी डोड़ घर जे भातियुनि जी पेट उधरियल आहे पेट उधरियल आहे। पेश आहे हिकु ॿियो गज़ल सदियुनि खां वक़्त जो हले पियो साॻियो ई वहिंवार सदियुनि खां वक़्त जो हले पियो साॻियो ई वहिंवार हिकु साल गुज़रे सुख दुख में ॿियो मथां सुवार हिकु साल गुज़रे सुख दुख में ॿियो मथां सुवार सदियुनि खां वक़्त जो हले पियो साॻियो ई वहिंवार सांसनि मां साल खुटंदे मौत

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आनंद बख्शी की इस शब्द रचना को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने, और ये फिल्म थी राजा और रंक।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

ये गीत हमने चरस फिल्म से लिया था। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोंसले की। क्षमा करें, मोहम्मद रफी के साथ ये आवाज थी लता मंगेशकर की। और लीजिए अब सुनिए दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

0: किशोर कुमार के साथ आशा भोंसले के गाए दोस्ताना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 1 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। यमुना जल परियोजना के लिए एमओयू पर राजस्थान और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। आज नई दिल्ली में एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि इस एमओयू

0: पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1: आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। अन्य मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जल बंटवारे की समस्या समाधान के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा।
2: यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमओए उसका होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं।
0: यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जोधपुर के एम्स और पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने पावटा अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में ये दौरा किया है। श्रीमती राठौर ने एम्स में भर्ती दो और पावटा अस्पताल में भर्ती छह प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों और आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों पर रक्षा पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई। वहीं पिछले दिनों से जारी प्री मानसून गतिविधियों से लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिली है। हालांकि उमस वाली गर्मी से लोग परेशान। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष प्री मानसून गतिविधियां अच्छी रही हैं। 1 से 21 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के माध्यम से फिटनेस, शांति, एकता और भाईचारे के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम यू कैन डू दिस, लेट्स मूव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 हुए हैं। अब बहनों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत है घर आंगन। इसे प्रस्तुत कर रही हैं रेखा आचार्य और सुरभि बोहरा।

0: है। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों

0: सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: बहना, आज अपन बात कर सा एक खास दिन रे बारे में, जिको है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। हर साल 23 जून ने मनायो जावे। ई दिन लोक सेवा करण आला कर्मचारी और अधिकारियों री मेहनत और योगदान ने सम्मान देवा खातर मनायो जावे। लोक सेवा करण आला और अधिकारियों री देश री उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका हुए है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और जन कल्याण जैसा कामों सु जनता री सेवा करे है। इयारी मेहनत सु समाज में विकास और खुशहाली आवे है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस रो महत्व हुए कि इरो मुख्य उद्देश्य जिको है वो है लोक सेवका ने प्रोत्साहित करना और जनता ने सेवा री भावना बढ़ावन देनो।
6: हाँ सरवी बहन, और देखो ई दिन तरह तरह का जिक्र ने कार्यक्रम में आयोजित करिया जावे है, बीमे लोक सेवका रा सम्मान करियो जावे है। और बहना, आज रे आधुनिक युग में तो लोक सेवक री भूमिका तो और महत्व होगी है। डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य योजनाओं, शिक्षा अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं, ए सब सफल जदी हुए जद एक लोक सेवक आपरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मेहनत सु इरे प्रति कार्य करे। जनता री समस्याओं रो समाधान करनो और विकास कार्यों में गति देनो, इस सब में इरी मुख्य जिम्मेवारी है। सागे सागे बेना, ई वर्ष वास्ता संयुक्त राष्ट्र लोक सेवक जिको विकास अपो दिवस बना रिया हो, इरे वैश्विक मंच री आधिकारिक थीम यानी इरो उद्देश्य है सार्वजनिक संस्थान रा परिवर्तन, नवाचार, भागीदारी और समावेशन ने बढ़ानो, ताकि लोक सेवाओं ने जनता तक तेजी और पारदर्शी तरीके से आधुनिक तकनीकियों द्वारा पहुँचाया जाए। साथ ही आम नागरिकों और स्थानीय समुदायों ने भी इनमें एक सक्रिय भागीदारी की भूमिका मिले और हर सरकारी सेवाओं का लाभ समाज के हर वर्ग और विशेषकर वंचित और कमजोर लोगों तक बिना की भेदभाव रे पहुँचे।
5: ई दिवस रो मुख्य उद्देश्य समुदाय रे वास्ता सार्वजनिक सेवा रे मूल्य और महत्व ने उजागर करण खातर भी लोक सेवकों रे योगदान ने सम्मान करनो हुए और युवाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनान खातिर प्रेरित करनो है। अपने लोक सेवकों रो सम्मान करनो चाहिए, हर कार्य में बियारी सराहना करनी चाहिए, साथ ही हर नागरिक ने भी समाज और राष्ट्र रे विकास में अपनो योगदान देनो चाहिए। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमें सेवा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जन कल्याण री भावना अपनावन रो संदेश देवे है। तो लेर चाला थाने गीत संगीत री दुनिया में सुनसो और फूटरसो कीतर लो।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90. QR കോഡ് സ്കാൻ കരോ, 5000 കാ ക്യാഷ്ബാക്ക് പാവ്. വാ, ദിൽ ബൻ ഗയാ.
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है.
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: બેન્યા, અપારે દેશનો ઇતિહાસ એસે મહાન વ્યક્તિત્વ શું ભર્યો પડ્યો હૈ જેકા આપણું પૂરો જીવન રાષ્ટ્ર સેવા વાસ્તે સમર્પિત કર દિયા થા. એસા હી એક મહાન શિક્ષાવિદ ઓર ચિંતક હૈ રાષ્ટ્રભક્ત ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી. બિયારી પુણ્યતિથિ આપણે બિયારી જીવન વિચાર ઓર દેશ રે પ્રતિ બિયારી યોગદાનને યાદ કરણ રો અવસર પ્રદાન કરે હૈ.
4: हाँ बेटा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 कलकत्ता में हुआ. बेना कम आयु में ही वह शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से जुड़ गया. वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज था. सागे ही कानून री पढ़ाई करी और बैरिस्टर भी बन गया. और मात्र 33 वर्ष री उम्र रे माए कलकत्ता विश्वविद्यालय रा कुलपति भी नियुक्त करिया गया. और आप रे ई कार्यकाल रे दौरान भी शिक्षा प्रणाली में कई तरीके रा आधुनिक सुधार और बंगाली भाषा ने उच्च शिक्षा रो माध्यम बनाने पर जोर दियो. साथ ही युवाओं ने राष्ट्र निर्माण वास्ता प्रेरित भी करियो, क्योंकि बियारा कहना हो कि देश रे प्रगति जने ही तेज उसी तभी संभव उसी जब नागरिक जागरूक, शिक्षित और आपरे कर्तव्य रे प्रति सजग उसी.
3: बिल्कुल डॉक्टर मुखर्जी, हमेशा सु ही भारत री एकता अखंडता ने सर्वोच्च महत्व दियो. वे देश हित रे मुद्दों पर स्पष्ट और दृढ़ विचार राखण वाला नेता था. मुखर्जी ने आपरे सिद्धांत राष्ट्र हित ने लेर अनेक कठिनाइयों रो सामनो करनो पड़ियो, लेकिन कभी भी वे आपरे मार्ग सु विचलित कोनी हुआ. और बने अपने यहाँ सीख भी मिले है कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ कठिन हो जाए, अपने बियारो सामनो जिको है वो बहुत ही हिम्मत सु करना चीजे. तो मुखर्जी आपरे जीवन में साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम प्रेम री प्रेरणा देवे है.
4: सही कहवा सुरभी बहन, अखंड भारत रो जिको निर्माण रो व्यरो सपनो होनी वो तो मतलब कि व्यरो सपनो वो रे जीवन में तो वो आप उतारियो रहो कि पश्चिम बंगाल भारत रो हिस्सो बनियो रहे. ये वास्ता भी खूब प्रयास भी किया और वह सफल भी हुआ, वरना आज पूरो बंगाल भारत री सीमा रे बाहर ही होतो. वह भारत रे संप्रभुता और एकता रे प्रति इतना समर्पित था कि वीरे वास्ता आप प्राणों री आहुति भी दे दी. आज भी और पुण्यतिथि पर आप सब ब्यौरे योगदान ने श्रद्धा पूर्वक नमन करो और आपरे मन में भी और संकल्प करो कि आपरे समाज में एकता और सद्भावना ने बढ़ावा दो और देश रे विकास में आपरो योगदान देवो. और आ ही सच्ची श्रद्धांजलि हुसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे प्रति.
5: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम. और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है. हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान

0: और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मैनो नारी शक्ति किसी भी समाज री असली राष्ट्र री ताकत हुआ करे। इतिहास साक्षी है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता, साहस और नेतृत्व क्षमता रो परिचय दियो है। नारी शक्ति वंदन केवल महिलाओं रो सम्मान करनो ही को नहीं हुए, बल्कि बियारे अधिकार, समानता और सशक्तिकरण ने बढ़ावो देवन री एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ करे।
1: सही कहो बना मैंने पहला रे बखत रे माए महिलाओं ने तो बहुत कड़ा सामाजिक बंधनों में रहना पड़ता हो। शिक्षा सु तो दूर दूर तक बियारा कोई ना तो रह तो ही को नहीं हो, क्योंकि एक महिला ने बस घर और घर सदस्य रे सेवा खातर ही आप पूरा जीवन न्यौछावर कर देने वाला ही समझ जावतो। पण धीरे धीरे शिक्षा री अलग जागरूकता और सरकारी योजनाओं री मदद सु आज हर क्षेत्र में महिला आप परचम लहरा रही है।

0: खेल हो या विज्ञान रो क्षेत्र, राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा या सेवा कार्य, हर जगह आपकी अलग पहचान साके व आगे बढ़ रही है। और अगर आप बात करो नारी शक्ति वंदन अधिनियम री, तो ओ अधिनियम बिना राजनीतिक नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, जिकारा उद्देश्य है महिलाओं री ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में बिरी भूमिका ने मजबूत करना।
1: जब महिलावां नेतृत्व करे है तो समाज में समानता, न्याय और विकास रा नया रास्ता खुले है। महिला नेतृत्व केवल महिलाओं रे खातिर ही लाभदायक कोनी बल्कि वे पूरे समाज और राष्ट्र रे खातिर उपयोगी है। महिलावां धैर्य और दूरदर्शिता सु कार्य करे है, जिनसु कही हुए कि विकास योजनावां अधिक प्रभावी बने हैं। आज रे समय में विकास रे जी की योजना है बिहार आप रे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व हुआ कर है। आज कई महिलाएं जिकी अभी देश विदेश में उच्च पदा पर कार्य कर रही है, पुरुषों सुकंधों मिलार चाल रही है, तो इससे बढ़िया या इसी सु ज्यादा खुशी की बात कहीं को नहीं हो सी। तो कार्य कर रही है, समाज ने प्रेरणा दे रही है, महिलाओं ने आगे बढ़ावन खातर शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। परिवार और समाज ने भी बेटियों ने प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा कर सके। तो बहना ले चाला आपने गीत संगीत री दुनिया में सुनसो और फूटरसो गीतड़ लो।

0: बेनिया, जीवन सुख और दुख रो संगम है। कदे तो अठे खुशियों री धूप हुए तो कठे कठिनाइयों री छाव। लेकिन जीवन री असली शक्ति आ है कि इंसान हर परिस्थिति में हिम्मत रे सागे आगे बढ़तो सीखे। आज अपन इसी विषय पर बात कर सा जी को संवेदनशील भी है और समाज से जुड़ियोड़ो भी है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस रे बारे में।
1: हाँ बहना, आज रे दिन यानी 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जावे। इन्हें एकल महिला रे रूप में भी ई दिवस से पहचानियो जावे। ई दिन रो उद्देश्य समाज रो ध्यान एकल महिला री ओर आकर्षित करना है जिका आपरे जीवन साथी ने खो दियो। बहना, जब एक महिला रो जीवन साथी नहीं रहवे तो केवल अभावात्मक दुखी को नहीं बल्कि कई बार आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों रो सामना भी करना पड़े। इन एकल महिलाओं ने ई बखत सहारे री, सम्मान री और अपनत्व री बहुत ज़्यादा जरूरत रहवे।
0: अनेकों महिलाएं आपरे साहस और आत्मविश्वास रे बल पर पालन पोषण कर रही है। बैनिया, जद अपा एकल महिला री बात करा तो रेखा बहन अपारे सामने इसी महिला री तस्वीर अपारे सामने आसी जी की किसी कारणवश आपरे परिवार री जीवन री जिम्मेदारियों ने अकेले ही निभा रही है। इस समय में महत्वपूर्ण हुए आर्थिक रूप से मजबूत होना।
1: सही कह रहे हो सुरभि बहन। बहना, आज आपा देखो ही हो कि कई बार एकल महिलाओं ने उपेक्षा री दृष्टि सु देखियो जावे है। ब्यारा जीवन पर अनेकों बंधन लगा दियो जावे। घूमने फिरने, हंसने, अच्छा खाना पीने में, यहाँ तक कि आपरे पसंद रे रंग रे पहनावे पर भी रोक लगा दी जावे। पर अब बखत बदल रहे। बहना, आज आ बात समझने री है कि एक महिला री पहचान वीरे पति सु नहीं बल्कि वीरी खुद री प्रतिभा, मेहनत, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व सु जुड़ी हुए। ये वास्ता ये पुरानी सोच ने छोड़ आपने सम्मान और समानता रो वातावरण बनाना होसी।
0: रेखा बहन, महिलाएं जी की आपरे परिवार रो पालन पोषण कर रही है, जी के मायने में कई प्रकार रा रोजगार कर रही है, कई नौकरी कर रही है, तो कोई आपरे टाबर ने अच्छी शिक्षा देर बियारो भविष्य संवार रही है, बे कोई ना कोई काम में लागे को लागते भी रहे। तो बहना जी का महिला समाज वास्ते प्रेरणा भी बने, बियारो संघर्ष अपने सिखावे कि कठिन परिस्थितियों में चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां बियारे सामने आ जावे, बियारा दुख तो अपा कम को नहीं कर सका लेकिन बियारा साथ जी को है वो अपा दे सका।
1: सही कह वो सुरभि बहन। हमारे गांव में देखो कमला

0: जो है वो कम लगता है। दाल अगर जल्दी गलावनी हुए तो पकावता टाइम थोड़ा घी और हल्दी डालो। चावल सफ़ेद और खिला खिला बनावन खातर पकावता समय भी में थोड़ा सो नींबू रो रस डालना चाहिए। हरी मिर्च ज़्यादा देर तक ताजी रखनी हो तो इरा डंठल जीका है वे डिब्बे में रखना चाहिए। दूध उफन सु बचावन खातिर बर्तन री किनारी पर थोड़ा सो घी फेर देना चाहिए। प्याज काटते समय अगर आपकी आँखियाँ में पानी आ रहे है तो घबरावन की जरूरत को नहीं, ये खातिर प्याज ने थोड़ी देर पानी में रखना चाहिए। पूरी कुरकुरी अपनी बने अगर बनावनी हुए तो बीरे खातर आटो और सूजी मिलावनी चाहिए। धनिया पुदीना इरी बात भी करनी जरूरी हुए क्योंकि यारे बिना जी को सब्जी रो स्वाद हुए नहीं वो कौन नहीं आया करे। तो धनिया पुदीना ताजा राखण खातिर कपड़ा में लपेट कर फ्रीज में रखो। रोटी नरम बनावनी हुए तो आटा गूंथता समय थोड़ा सा घी इसमें मिला लियो जावे जिसु रोटी है नरम बने। और दही जमाता समय बर्तन रे ढाक रे गर्म जगह पर ढककर रखना चाहिए ताकि दही जी को है वो बढ़िया जमे।
1: ए तो बहुत ही चोखा टिप्स दिया सभी बहन। अब देखो नहीं अब कार्यक्रम आपके आखिरी पड़ाव में है तो देखो मैं आई संदेश दे सूँ आपकी बहना ने कि बहना सब कुछ पहला सुनिर्धारित है। आपा कुछ भी बदल को नहीं सको हो पर आपा रे हाथ में है खुश रहो और खुश रह परा दूसरों ने भी खुश रखनो और जिंदगी रे हर पल रो आनंद लेनो। रिश्तों में गर्माहट रखनी एक दूसरे ने समय देनो। पर बहना देखो नहीं अब आप जी की स्टूडियो री घड़ी है नहीं वह टिक टिक कर इशारा देरी कर रही है कि आप अपने कार्यक्रम में अठे ही रोक देवो। तो बहना अब समय आ गयो है था लोगों से सीख लेने रो। तो मैं रेखाचार्य
0: मैं सुरभि बोहरा
1: और घना घना
0: राम राम सा।

0: एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत।

0: की तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड़ जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड़ ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान

0: ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है दीवाना मैं दीवाना।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आप सुन सकते हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए अब सुनिए हीरा पन्ना फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

किशोर कुमार के गाए कुदरत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी आज की पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम को 5 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। दूसरी सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।

0: और अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगो दामदिनियाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा दोस्त अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: सांस चले तो जिंदगी चलती है, दिल धड़के तो कहानी बनती है। आज उसी कहानी को थोड़ा समझने हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और शायद आप मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं हूँ आपका दोस्त रिपु दमन।
1: और साथ ही दोस्तों, आज आपके साथ मैं हूँ आपकी युवा मित्र प्रियंका सोनी।
0: प्रियंका, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिन भर की भाग दौड़ में हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, और असल में कुछ बातें ऐसी होती है जो मन में कहीं ना कहीं अटक जाती है।
1: हाँ, और फिर वो बातें दिमाग में रिपीट भी होती रहती है पूरे दिन।
0: मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसी ही बातें बार बार आ रही है। कल न्यूज में देख रहा था कि 31 साल का एक लड़का सॉफ्टवेयर जॉब करता था, रेगुलर जिम भी जाता था, यहाँ तक कि स्विमिंग भी करता था, और कोई स्मोकिंग या कोई नशीला पदार्थ नहीं लेता था, और ऑफिस में बैठे बैठे अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया
1: 31 की उम्र में। ये तो सच में बहुत शॉकिंग है, इतनी कम उम्र में।
0: यही तो डराने वाली बात है कि अब हार्ट अटैक सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रह गया है। ये हमारी बॉडी बाहर से तो जवान दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा थकी हुई है।
1: लेकिन एक्सरसाइज करने और हेल्दी खाना खाने से तो फायदा होता है ना?
0: होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत बेसिक चीजें हम मिस कर रहे हैं, जैसे कि सही तरीके से सांस लेना।
1: अब रिपुदमन, तुम ये मत कहना कि हम सांस भी ठीक से नहीं लेते।
0: अरे लेते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना नहीं लेते, और सही तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लेते।
1: सही तरीके से मतलब?
0: आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम हर काम हड़बड़ी में करते हैं, इतनी जल्दी टेंशन स्ट्रेस, हमारी सांसें भी उथली और तेज होती जा रही है। इससे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, और सांस और इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है।
1: दिल पर? वो कैसे?
0: जब फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन नहीं भेज पाता तो दिल पूरे दिन बहुत ज्यादा तेजी से धड़कता है और ज्यादा मेहनत करता है, और हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, ये कई सालों की इसकी थकान का नतीजा होता है।
1: तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल यंग लोगों में सांस फूलना, बेचैनी, पैनिक अटैक और हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं?
0: हाँ, क्यों नहीं, सांस और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं।

0: और दिमाग का सीधा असर दिल पर पड़ता है।
1: अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है?
0: प्राणायाम।
1: हाँ, मैंने भी कभी कभार ट्राई किया है, लेकिन इसका इतना असर होता है ये नहीं पता था। और मैंने कई लोगों को तो ये कहते सुना है कि उनको ऐसा लगता है कि प्राणायाम बहुत ही स्लो और बोरिंग चीज है।
0: ये वही लोग कहते हैं जो कॉफी बिना जाग नहीं पाते और मोबाइल बिना सो नहीं पाते।
1: हाँ, बात तो सही है तुम्हारी।
0: प्राणायाम स्लो नहीं होता, वो हमारे नर्वस सिस्टम का पूरा रीसेट बटन होता है।
1: और अब जब फेफड़ों और दिल की बात चल रही है तो इनके लिए कौन कौन से प्राणायाम सच में काम करते हैं? अनुलोम विलोम तो मैंने कई बार ट्राई भी किया है।
0: अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, ये फेफड़ों की गहराई बढ़ाता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल सुधारता है और दिल को बैलेंस रखता है। इसके अलावा और दो प्राणायाम है जो बहुत ही सिंपल है लेकिन उनका असर बहुत पावरफुल होता है।
1: अच्छा, तो फिर बताओ।
0: एक जैसे की है भ्रामरी,
1: वही जिसमें की आवाज निकलती है।
0: हाँ हाँ, वो आवाज नहीं है, वो दिल और दिमाग के बीच का जो शोर कम करता है, बीपी, एंजाइटी, बेचैनी, इन सब पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है।
1: अच्छा, और दूसरा कौन सा था?
0: मतलब दूसरा है गहरी सांस का अभ्यास करना, नाक से लंबी सांस लेना ताकि वो पेट तक पहुंचे और उसे फिर धीरे धीरे छोड़ना।
1: अच्छा, सुनने में तो ये काफी इजी लग रहा है।
0: सुनने में आसान है लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इसके लिए फोन नीचे रखना पड़ता है।
1: यही तो आजकल सबसे मुश्किल काम है।
0: इसके लिए घंटों देने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। जिम भी नहीं जाना पड़ता, कोई मशीन का भी हाथ नहीं लगाना पड़ता और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता।
1: लेकिन अजीब है ना रिपुदमन, हम जिंदगी तो लंबी चाहते हैं लेकिन अगर कोई कहे कि लंबी सांस लो तो वो भी नहीं कर पाते,
0: क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है। हम काम करते हैं, भागते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं, पर शांति से बैठकर सांस लेना हमें सिखाया ही नहीं गया है।
1: और शायद इसीलिए तो आजकल न्यूज में इतनी कम उम्र के चेहरे भी दिखाई देने लगे हैं।
0: कहते हैं ना कि जीने के हैं 4 दिन, लेकिन अगर सांस ही ढंग से नहीं लोगे तो वाकई में कह सकते हैं कि जीने के 4 दिन ही बचेंगे। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अब वक्त है दोस्तों प्रोग्राम में आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर से जुड़े दो प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है
1: कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिस्टर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है।
0: और आपका दूसरा प्रश्न है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है। तो ये थे दोस्तों आपके दोनों प्रश्न। कार्यक्रम के अंत में हमारे जवाबों से मिलाइएगा। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: रिपुदमन, आजकल तो क्या बात है, काफ़ी वीडियो एडिटिंग करने लगे हो। देखे मैंने काफ़ी वीडियोस और काफ़ी अच्छा करते हो, एकदम प्रोफेशनल लगता है।
1: अरे हाँ, मैंने भी मोबाइल से वीडियो एडिटिंग शुरू करना की थी शौक के तौर पर। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा तो कुछ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, उन पर काम कर लेता हूँ और इनसे इनकम भी हो जाती है थोड़ी बहुत,
0: है ना। बस यही तो बात है। वैसे मुझे भी वीडियो एडिटिंग काफ़ी पसंद है और मेरे मन में इससे रिलेटेड कुछ ख्याल भी आते हैं।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: कि आजकल बहुत से युवा हैं जिनके पास हुनर है लेकिन उन्हें खुद पता नहीं होता कि वही हुनर रोजगार भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, मैं भी शौक के तौर पे मैंने शुरू किया था, पर समय के साथ मुझे इसमें मज़ा आने लगा और इससे मुझे काम मिलने लगा। लेकिन आज वही एडिटिंग, वही स्किल मुझे

0: छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए पैसों की इनकम दिलवा रही है।
1: यही तो वो बात है जो आज के युवाओं को समझनी है। ये वही ऊर्जा है जिसे हम अक्सर युवा शक्ति कहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम इस शक्ति को सही जगह इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर इसे सिर्फ थकान, कन्फ्यूजन या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों में गंवा रहे हैं।
0: देखो, वैसे आज का युवा पहले जैसा नहीं है। वो सिर्फ सरकारी नौकरी की लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहता, वो सीख कर अपना कुछ करना चाहता है। बीकानेर के युवाओं को ही देख लो, कई फूड व्लॉगिंग करना शुरू कर चुके हैं, तो कई घरों में ऑनलाइन बुटीक चला रहे हैं, और कुछ तो फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग के जरिए फ्रीलांसिंग काम भी कर रहे हैं।
1: ये बात तो तुम्हारी सही है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब बड़े शहरों में जाए बिना हो रहा है। लेकिन आज एक सच ये भी है कि सभी युवाओं की सोच इतनी ज़्यादा क्लियर अभी तक हुई नहीं है। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं कि आगे करना क्या है,
0: और यहीं पर स्किल की बात आती है। आज रोजगार डिग्री नहीं है, स्किल तय करता है। हाँ दोस्तों, चाहे वो डिजिटल स्किल हो या टेक्नोलॉजिकल स्किल हो या क्रिएटिव स्किल हो, हर जगह काम आती है।
1: हाँ दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब का काफी चलन है।
0: इसमें कुछ कोर्सेज जैसे ITI या कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आते हैं। और यही नहीं दोस्तों कि सरकार भी इसमें युवाओं की काफी मदद कर रही है और बहुत सारे प्रयास कर रही है ताकि युवा इनसे सीख सके, कुशल होकर रोजगार शुरू कर सके।
1: लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है,
0: और वह दोस्तों शुरुआत में डरना। पता नहीं होता ना कि होगा भी या नहीं होगा,
1: लोग क्या कहेंगे, और यहीं पर मन सबसे पहले हार मान लेता है।
0: इसलिए मन को मजबूत रखिए, इतना जल्दी हार मत मानिए, जितनी स्किल्स सीखिए,
1: क्योंकि स्किल भी उतनी जरूरी है जितना मन का मजबूत होना। दोस्तों, योगा, मेडिटेशन या कुछ समय खुद के साथ बिताना, अपने आप को समझना, ये सब उसी मानसिक ताकत को बनाते हैं जो आपको टिके रहना सिखाती है,
0: क्योंकि आज मौका है और रास्ता भी है।
1: बस जरूरत है खुद पर भरोसे की। तो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं
0: तो घबराइए नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। बस रुकिए मत, एक स्किल चुनिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए,
1: क्योंकि जब युवा आगे बढ़ता है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा शहर, पूरा समाज आगे बढ़ता है। और अब बात जब युवाओं की चल रही है तो हम सेना के नौजवानों को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं सेना के नौजवानों को डेडिकेटेड ये गीत।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: साथ।
1: और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाशवाणी।

0: है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अन

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रियंका एक बात बताओ, दिन में 24 घंटे होते हैं ना?
3: हाँ।
2: पर मेरे पास हमेशा 4 घंटे कम क्यों पड़ जाते हैं?
3: क्योंकि रिपुदमन, तुम्हारे वो 4 घंटे रात को वेब सीरीज बिंज वॉच करने और फोन स्क्रॉल करने में ही निकल जाते हैं।
2: नहीं, वो बात नहीं है।
3: तो?
2: फोन नहीं, मतलब शाम को कयम रोड की जो भीड़, भारी भीड़ वाली रस्ते होते हैं, वहां से मैं फुर्ती से निकल आता हूँ। पर आजकल जब सुबह अलार्म बजता है तो अपनी पलकों को उठाना वो सबसे भारी काम लगने लगा है मुझे। मेरा सिस्टम धीरे धीरे हैंग होने लगा है।
3: सिस्टम तो हैंग होगा ही ना, हमारी बॉडी बिल्कुल एक स्मार्ट गैजेट की तरह है। अब तुम फोन को रात भर इस्तेमाल करो, उसमें बैकग्राउंड में 50 ऐप्स चालू रख दो और सुबह बिना चार्ज किए सोचो कि वो 100% परफॉर्मेंस दे, तो बैटरी तो ड्रेन होगी ना।
2: बात तो सही है, पर करें क्या, 20-25 की उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठ तो सकते नहीं है। करियर की टेंशन है, पढ़ाई का काम है, भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी।
3: तो आराम से बैठने को कह कौन रहा है, अपने इसी प्यारे बीकानेर की इन्हीं गलियों में रहकर बस एक छोटा सा रीसेट बटन दबाना है।
2: अच्छा,
3: एक बात बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या काम करते हो तुम?
2: अरे बस वही जो सब करते हैं, एक आंख खोलकर ब्राइटनेस कम करता हूँ मोबाइल की और फिर बढ़िया नोटिफिकेशन चेक करता हूँ कि रात भर में दुनिया में क्या बदला है।
3: देखो यही तो है ना गड़बड़, सुबह उठते ही स्क्रीन देखने की जगह अगर सिर्फ एक गिलास पानी पीकर 5 मिनट बाहर बालकनी में जाकर अपनी बीकानेर वाली मीठी मीठी धूप और ताजी हवा ली जाए ना, तो शरीर के अंदर का नेचुरल अलार्म क्लॉक रीसेट हो जाता है।
2: अच्छा।
3: बॉडी को पता चल जाता है कि भाई दिन शुरू हो गया है, अब जाग जाओ।
2: अच्छा, मतलब ये जो सुबह सुबह पब्लिक पार्क में जॉगिंग करने वाले अंकल जी के चेहरे पर इतनी फ्रेशनेस दिखाई देती है, वो ऐसे ही आएगी?
3: बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है तुम्हारे खान पान में।
2: अच्छा,
3: अब गाड़ी में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल तो डालते नहीं हो, फिर शरीर में सुबह सुबह खाली पेट सिर्फ कड़क चाय और बीकानेरी भुजिया क्यों डालते हो?
2: अब तुम बीकानेर की जान पर आ गए हो, भुजिया की बात यहाँ नहीं होगी।
3: आना तो पड़ेगा ही ना, हम सोचते हैं कि डाइट का मतलब घास फूस खाना है, जबकि असली बात है टाइमिंग। सुबह का नाश्ता एकदम राजा की तरह होना चाहिए, भरपूर और हैवी। दोपहर का खाना वजीर की तरह, थोड़ा कम, और रात का खाना बिल्कुल एक फकीर की तरह, एकदम हल्का। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, रात को भारी भरकम खाना और सुबह सिर्फ चाय।
2: प्रियंका ये बात सुनने में तो वैसे छोटी लग रही है, लेकिन ध्यान दे तो पूरा दिन इन्हीं पर टिका हुआ है। अगर हमारा एक फिक्स टाइम टेबल होगा कि कब उठना है, कब खाना खाना है और कब काम करना है, तो शायद हमारे दिमाग को पहले से ही ये पता होगा और उसे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब आगे क्या करना है, और एनर्जी भी बचेगी, है ना?
3: अब कर रहे हो ना तुम अच्छी बात। और जब ये एनर्जी बचेगी तभी तो तुम अपने काम और अपने शौक पूरे कर पाओगे। और हाँ, रात को नींद न आने का जो गाना तुम गाते हो उसका भी एक हैक है।
2: अच्छा, जल्दी बताओ, वो तो सबसे जरूरी है।
3: तो फिर सुनो, सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम 0 कर दो, फोन साइड में रखो। उस वक्त या तो कोई अच्छी किताब पढ़ो या फिर कोई तुम्हारा फेवरेट कोई बढ़िया सा 90s का गाना या रूहानी सूफी संगीत सुन लो। दिमाग को अपने आप सिग्नल मिल जाएगा कि अब शटडाउन का टाइम आ गया है।
2: वाह, 90s के गाने और सूफी संगीत का नाम लेके तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली,
3: है ना?
2: सच कहूं प्रियंका, आज तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ के साथ साथ अपनी रूटीन की सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी।
3: करनी ही चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो बीकानेर वासी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी अपने फोन साइड में रखकर अपने दिल

0: रीसेट करने की प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे।
1: बिल्कुल, और इस नए रूटीन और प्लानिंग की शानदार शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन ब्रेक के साथ। क्यों, कैसा रहेगा?
0: एकदम सही। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने दिन को थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक करने और आपके लिए छोड़ जाते हैं बेहद खूबसूरत सा गीत।
1: तो आप सुनते रहिए प्यारा सा गीत, बस अभी लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: लो भाई, पेमेंट हो गया। प्रियंका, आजकल मैं तो पर्स रखना ही छोड़ दिया। कल ही की बात है, बड़े बाजार में 10 रुपए की कचोरी खाई थी, आदत से मजबूर जीभ टटोलने लगा। इतने में कचोरी वाले भैया ने शान से कहा कि अरे भाई, छुट्टों की टेंशन लेना छोड़ दो, बार कोड डिब्बे के पीछे चिपकाया हुआ, स्कैन कर दो।
6: बिल्कुल, और यही तो असली मैजिक है। सोचो, कुछ सालों पहले तक हम छुट्टे नहीं हैं, इस समस्या से कितना जूझते थे, आज

0: लेकिन नुक्कड़ पर चाय वाले से लेकर ऑटो वाले तक सब डिजिटल हो रखे हैं। ये जो हमारी जनरेशन की उंगलियों पर दुनिया नाच रही है ना, यही तो इस नए इंडिया की स्पीड है।
1: हाँ, उंगली पर दुनिया नाच रही है या हम स्क्रीन के इशारे पर नाच रहे, मतलब सच बताऊं तो इंटरनेट ने हमारे युवाओं की लाइफ पलट कर रख दी। अब देखो, बीकानेर के किसी छोटे से मोहल्ले में बैठकर लड़का बेंगलोर की किसी कंपनी के लिए कोडिंग कर रहा है, और कोई घर में बैठकर यूट्यूब अपने इस सोशल मीडिया से गिटार सीख रहा है।
0: एग्जैक्टली, आज के युवा के लिए लोकेशन कोई बैरियर रहा नहीं है। तुम्हारे पास इंटरनेट है तो तुम चाहे जूनागढ़ किले की सीढ़ियों पर बैठे हो या पब्लिक पार्क में, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, आज का यूथ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वो खुद अपने स्मार्टफोन से नए बिजनेस और आइडियाज क्रिएट कर रहा है।
1: बात एकदम तुमने पते की गई और बहुत भारी भरकम बात कह दी, लेकिन एक लेकिन और है इसमें।
0: क्या?
1: जो ये स्मार्टफोन है ना, इसमें कुछ लोगों को थोड़ा ओवर स्मार्ट भी कर दिया है। दिन भर वीडियोस स्क्रॉल करना, दूसरों की चमचमाती हुई फेक लाइफ देखकर अपनी असल लाइफ को बोर समझना, ये भी तो इसकी इस डिजिटल दुनिया का एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं अपन।
0: बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। डिजिटल दुनिया बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पावर से अपनी स्किल अपग्रेड करते हो या सिर्फ लाइक्स और व्यूज के चक्रव्यूह में फंसकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हो। हमें समझना होगा कि वर्चुअल दुनिया की वैलिडेशन हमारी असली दुनिया के सुकून और रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती।
1: अरे वाह, क्या बात कह दी तुमने। और हाँ, एक और सबसे जरूरी बात, ये जो फोन पर हेलो सर आपकी लॉटरी लगी है, जरा वो OTP तो बताना। वाले कलाकार जो घूम रहे हैं ना, उनसे भी तो हमारे युवाओं को अपने घर के बड़ों को बचाना है।
0: एकदम सही। डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर फिल्टर लगाना या ट्रेंडिंग गानों पर डांस करना नहीं है। इसका असली मतलब है साइबर सिक्योरिटी और अपनी प्राइवेसी को समझना। हमें टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है, उसका गुलाम नहीं। घर के बड़ों को डिजिटल फ्रॉड से बचाना आज के युवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: 100% की बात की। कुल मिलाकर बात यह है प्रियंका कि डिजिटल इंडिया की सबसे इस बुलेट ट्रेन का स्टीयरिंग युवाओं के हाथ में है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि किस टाइम पर ब्रेक लगाना है और ब्रेक लगाना आना चाहिए।
0: और मुझे लगता है हमारे श्रोता इस बात को बिल्कुल गहराई से समझ गए होंगे कि इंटरनेट के इस समंदर में तैरना कैसे है। तो रिपुदमन, हम इस डिजिटल ज्ञान की चर्चा को थोड़ा सा म्यूजिकल टच दिया जाए।
1: अरे बिल्कुल, इंटरनेट का सर्वर चाहे डाउन हो सकता है, लेकिन हमारे शो और बीकानेर की रौनक कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अपना ईयरफोन लगा लीजिए या रेडियो का वॉल्यूम फुल कर लीजिए और सुनिए शानदार थिरकाने वाला गाना।
0: और हम अभी हाजिर होते हैं बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत।

0: वाकई में पानी पीने के बाद सच में सुकून आ जाता है, उसमें भी बोतल खुद की लेके आए तो वाकई में सुकून तो आता ही
1: है ना। वैसे एक बात मैंने पिछले कुछ दिनों में नोटिस की है, आजकल तुम ये अपनी चमचमाती हुई स्टील की बोतल बड़ा फ्लॉन्ट कर रहे हो। पहले तो जहाँ जाते थे हर बार नई प्लास्टिक की बोतल उठा के ले आते थे।
0: अरे क्यों ना करूँ, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। पर प्रियंका मजेदार बात बताओ, मैं अकेला नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर बैठा था।
1: अच्छा।
0: मैंने ध्यान दिया कि हम में से किसी के भी हाथ में पॉलिथीन या झूला प्लास्टिक वाला नहीं था। किसी के पास अपना कैनवास वाला टूट बैग था, तो किसी के पास अपनी पानी की बोतल थी। मुझे लगा बॉस माहौल बदल रहा है।
1: एकदम सच बात है। पता है पहले पर्यावरण शब्द सुनते ही ऐसा लगता था जैसे किसी भारी भरकम सेमिनार की बात हो रही है, या फिर अर्थ डे के दिन एक पौधा लगाकर फोटो खिंचवाने की कोई रस्म निभाई जाती थी। लेकिन अब अपने बीकानेर के यूथ को ही देख लो, इसके लिए किसी को स्टेज पर चढ़कर भाषण देने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
0: बिल्कुल, जब जैसे कल शाम की बात देख लो, मैं सागर की छतरियों की तरफ गया हुआ था, वहां दो तीन मतलब ग्रुप्स बैठे थे लड़के लड़कियों के, वो चिप्स खा रहे थे।
1: अच्छा।
0: एज यूजुअल जैसा कि हम खाया करते हैं, और खाकर क्या करते हैं, कचरा वहीं फेंक देते हैं। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने चिप्स खाए और चुपचाप और रैपर मोड़ कर अपनी जेब में रख लिया। मैं तो हैरान रह गया ये हरकत देख कर। दोस्तों जब उनकी तरफ देखा तो देख कर चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। मतलब इसमें भी अपना एक स्वैग है यार। उनको किसी ने डंडा लेकर ये नहीं कहा था कि कचरा मत फैलाओ, ये उनका अपना क्लास है।
1: यही तो है रियल में कूल बनना। हमारी जनरेशन धीरे धीरे ये बात समझ गई है कि सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण का ध्यान रखना कोई ड्यूटी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। चाहे दोस्तों के साथ एक ही बाइक या कार में कार पूल करके कहीं जाना हो, या चाय वाले भैया को प्लास्टिक के कप की जगह कुल्हड़ में चाय देने के लिए कहना, बिना किसी शोर शराबे के बातों ही बातों में हमारे युवा कितनी बड़ी चीजें बदल रहे हैं।
0: और पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम समझ गए हैं कि अगर आज हम हवा और पानी को इज्जत नहीं देंगे,
1: हाँ,
0: तो कल सोशल मीडिया पर चाहे कितने भी फिल्टर लगा लो, बाहर की ये धुंधली हवा, दम घोटू हवा को हम नहीं रोक पाएंगे। पर्यावरण बचाने के लिए अब किसी सुपर हीरो वाले कैप की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत बदलनी। क्यों, सही कहा ना प्रियंका?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और अपनी इस आदत और अपनी इस घूमने फिरने की आदत में हम ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेना, जैसे हम घूमने जाते हैं और उसमें कचरा फैलाते हैं और नहीं फैलाएं, अपने देश को स्वच्छ रखें, अपनी जगह को स्वच्छ रखें, तो हम भी खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और आगे सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था,
1: वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है,
0: और इसका सही जवाब है 70th।
1: महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है,
0: जिसका सही जवाब है दीप्ति शर्मा।
1: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके मजेदार सेगमेंट यानी रोजगार सूचना इन्फॉर्मेशन वाला मामला है। तो इसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं।
0: इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, TGT टीचर, स्पेशल एजुकेटर, IT असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती की जाएगी।
1: दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन 16 जून से शुरू हो चुके हैं, और इसके लिए अधिक जानकारी जो कि आपकी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, इन सभी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर, मैं वेबसाइट दोबारा दोहरा देता हूं, dssb.delhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: और ध्यान रखिएगा, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है, तो

0: ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इन छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातों के सिलसिले में आज की युवाणी का वक्त भी कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला।
1: अरे हाँ बिल्कुल, घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया क्योंकि अपन बीकानेर के भाइयों से बात करने आते हैं और इस बातचीत में समय का पता ही नहीं चलता।
0: भाइयों से और बहनों से भी। हम आपसे फिर मिलेंगे युवाणी के अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही नए किस्सों के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर। शुभ संध्या। नमस्कार।

युवा मित्रों ने अभी अपना कार्यक्रम सुना युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे सुनिएगा फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गज़लें, और रात 9:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

रात 8:30 पर सुनिएगा लोक संगीत और रात 8 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। संध्या 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत।

अभियान, कीट नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप और इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में लोकगीत और लोक भजन तो होंगे ही। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर सुनेगा फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही संगीतकार, और आज के संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। ये तो था हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

संध्या 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय हैं खेजड़ली का पर्यावरण आंदोलन, बीकानेर में प्याज भंडारण अनुदान योजना 2026, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन।

0: को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश

0: परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और आज के संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं कुमार सानू और उदित नारायण, शान और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।

0: फिल्म का नाम था एक्सपोज। स्वर था हिमेश रेशमिया, योयो हनी सिंह और पलक मुछाल का, और संगीत था हिमेश रेशमिया का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसमें आज आपने हिमेश रेशमिया के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गाने सुने, समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी, और उसके बाद 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव,

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के एमओयू से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है, जल्दी ही एमओयू भी किया जाएगा।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओयू करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के उम्मीद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बना

0: बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल SOP की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल की प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर NOC से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
3: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक होगा हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर

0: जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉ. मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुन करके एक विचार को स्थापित किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ, किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी है। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गई। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी

दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गांवों में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गई। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है।

0: बरसातों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मॉनसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आम जन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहलियां आज री खास खबरां, यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन ने लिए नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी, राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला, जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावा ने लेर विशेष अभियान चलाया गया, नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ, काश्तकारा सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपाया माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। समाचारा रे साथे मैं संगीता शर्मा, अबे समाचार विगतवार। यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन सू जुड़िया न्यारा न्यारा पहलुआ माथे आज नवी दिल्ली माए बैठक भी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परियोजना ने एमओयू सू जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा माथे अंतिम रूप दियो, साथ ही किसाऊ बांध परियोजना माथे भी विचार विमर्श करियो। इन मौके माथे श्री पाटिल कहो कि यमुना जल परियोजना ने दीर्घकालिक नजरिए रे साथ आगे बधायो जा रही है। इनरे तहत पानी ने पाइपलाइन रे माध्यम सू पहुंचाने रो प्रस्ताव है, जिनसू वितरण व्यवस्था चौकी वेला बना कहो कि किसाऊ बांध परियोजना रे बारह माए छह राज्यों रा मुद्दा रो समाधान व्यू है, बेगो ही एमओयू भी करो जावेला।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा कहो कि यमुना जल परियोजनावां सू सेखावाटी खेतर खास है, बेगों बेगो इन्हें धरातल माथे लायो जावेला। वठीने श्री सैनी कहो कि बैठक माए बरसात रे पानी ने सहेज राजस्थान पहुंचाने ने लेर विचार विमर्श भी करयो गयो। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आज करौली पहुंचा, वणा सर्किट हाउस पांचना संघर्ष समिति रा प्रतिनिधियां रे साथ बंटल करी।

0: संघर्ष समिति रा अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और दूजा पंच पटेलारी उपस्थिति में समस्या रे समाधान खातिर विचार विमर्श करयो गयो। इंद्रे चालता करोली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहा। वठीने पांचना बांध सू सिंचाई खातिर नहरा माए पानी छोड़ने ने लेर सवाई माधोपुर जिले रा खंडीप गांव माए काश्तकारारो महापड़ाव आज भी जारी रहो। वठीने धरने रे कारण कुछ वक्त ताई रेल यातायात भी प्रभावित रहो। मौके माथे मोटी तादाद माए पुलिस बल तैनात है। जयपुर माए आज मंत्रिमंडलीय उप समिति री बैठक भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवारी अध्यक्षता माए हुई। इन बैठक माए प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला माए रियायती दरा माथे जमीन आवंटन रा प्रकरणा माथे विचार विमर्श करयो गयो। बैठक माए शिक्षा स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़िया प्रस्ताव माथे समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जोधपुर रा उम्मेद सफाखाना रो जायजो करयो। वणा प्रसूतावा चिकित्सका और नर्सिंग स्टाफ सू बणतल कर उपचार व्यवस्थावा माते फीडबैक लियो। साथ ही अहलकारा ने चिकित्सा सेवावा ने बत्ती प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनावण खातिर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इंद्र पाछे खबर नवीसा सू बणतल माए श्रीमती राठौड़ कहो कि हर मरीज ने चोखो और सुरक्षित इलाज मुहैया करवाणो राज्य सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम जन ने चिकित्सालय सारू भरोसो बनायो राखणो चाहिए। वणा कहो कि सगड़ा सफाखाना माए मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल SOP री पालना पक्की करने खातिर जोर दियो जा रियो है।
1: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव बोर्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल की प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: ध्यान जोग है कि पावटा सफाखाना माए सिजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूतावा रे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है। जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्था री जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो। नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावा और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामा री जांच करी। इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावा और पुस्तकालया ने सील करयो गयो। साथ ही 24 कोचिंग सेंटरा ने फायर सेफ्टी नियमा री अनुपालना खातिर नोटिस जारी करया गया। अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण आपातकालीन निकास मार्ग और फायर NOC सू जुड़िया दस्तावेजा री जांच करी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है। NTA रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11,00,000 सू 32 पडेसरी भेड़ा व्याहा। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नूवी दिल्ली माए शुभारंभ करयो। इन मौके माथे श्री शाह कहो कि काश्तकारा ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। वणा कहो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारा सू खरीदने रो लखस राख्यो है। वणा किसाना री भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलिया री भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है। अलनीनो संकट रे संभावित असर सू निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रिया और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। वणा कहो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश रा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावा तैयार कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारा सू आ योजना

0: ने प्रभावी रूप से लागू करने री अरज करी है। साथ ही वणा वैज्ञानिका सू कास्तकारा ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने री बात कही है।
1: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: और अब मौसम, राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मानसून गतिविधियां रो असर देखण ने मिल्यो। सीकर और करौली माए दोपहरा पाछे मौसम बदल्यो और तेज हवावारे साथ धूल रो गुबार छाग्यो, साथ ही बूंदाबांदी हुई। वटीने श्रीगंगानगर जिले रा सूरतगढ़, राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावा साथ बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली, इनरे पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावारे साथ बादलारी आवाजावी देखने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ 7 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज, वटीने 12 जिला माए येलो अलर्ट जारी करयो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथ हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगह माथे झोंकेदार हवावा चालने रा भी आसार है। दक्षिण राजस्थान माए बरसात री गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा कई नेतावां ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिख्यो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करयो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवारे मार्ग माथे चालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजिया कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करयो।
2: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक हर टाबरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सूयो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आपरे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावन खातिर बधाओ दे रही है। वणा कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगला नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। यह पुरस्कार 15 सू 18 बरस आयु वर्गरा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति कानी सू यह पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान करया जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करयो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एक और फेरू सुनो। यमुना जल परियोजना वारे क्रियान्वयन ने लेर नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावां ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। कास्तकारा सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायां माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारों ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनना सगड़ा भाया अर बहना ने आप रहे तले भरत भाई अर
1: डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य रा
0: घना घना राम राम। डॉक्टर साहब एक बात है, देखो अबार ई लाए रे मैंने कठे भी जवानी जने जवानी जने तो पानी तो जवाब तो अगर सगलो लेट जाना सोचा रास्ते में देखो काम लागी बढ़िया मतलब आप लगभग एक दो लीटर तो आप लेट जावा ही पर रस्ते में पहुंचा को आधा जितनी पानी खत्म हो जाए कारण अगर बार बार इतनी तीस लागे कि पानी रो पत्तो ही कौन चले एक जगह कहीं है कि कठी भी रोई रमन ने चला जन ध्यान पड़े कि जठ कोई रूख या दरखत मिले नहीं आराम बैठे आवे
1: एकदम।
0: और तापमान में कितो फर्क हुआ है कि देखो बिना दरखत री कोई जगह है दरखत वाले जगह रे तापमान में घणो फर्क है जन पत्तो चले कि देखो जो दरखत है कितो महत्व है और बीमे भी खेजड़ी मिल जावे तो पछे केनो ही कहीं।
1: देखो सर खेजड़ी में तो आप राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कह और खेजड़ी रे किसो किसो भाग है जिको आप काम रोको
0: सगड़ी चीज काम
1: हर चीज भी रे काम हो रही
0: है बिल्कुल सगड़ी
1: काम है के मिनख रो शरीर है भी शरीर किसो अंग है जिके अंग ने आप कमजोर माना अंग रो आप ध्यान नहीं करा मतलब अगर कोई एक भी अंग अगर हड़को हो जावे तो जीवन आप एकदम बिगड़ जावे। बार बार खेजड़ी मायने खेजड़ी हर चीज आप काम चाहे बार लूख ले लो चाहे बीरी डाड़ा ले लो चाहे बीरा ताड़ा ले लो हर चीज बीरी काम रही है। विशेष तौर से बात करा तो खेजड़ी जी को है पर्यावरण आंदोलन रो एक प्रतीक बनिया है और आप कहवत भी है क्या करे राजस्थान में मान के सर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान
0: बिल्कुल
1: यानी माथो कट जावे भले ही कटो पर रूख रहना चीज है। तो आज की परंपरा जी की आई है आ सगड़ी परंपरा खेजड़ी से जुड़ती हुई निकली है।
0: देखो खेजड़ी ना सिर्फ परंपरा निकली है बल्कि खेजड़ी तो अपर वरदान बन निकली है और ई वरदान वास्ते खेजड़ी वास्ते लोग संघर्ष भी घने करियो है। खेजड़ी रो जो को पर्यावरण आंदोलन है वो तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही है के खेजड़ी बचाने वास्ते जो को है कितो अमृता देवी रे निर्देशन में कितना लोग बलिदान दियो आप रो और आज भी देखा खेजड़ली गांव रे अलावा भी अमृता देवी री आ शहादत जकी बेकार कोनी की है लोगों में जागरूकता आई है और बीरो असर भी दिख रियो है। देखो नमामि भाई याद अला था ने कि आज 30 40 साल पहले बस रे मैंने अगर कोई गांव जाऊं था खासकर रोई रोई गांव तो जने रस्ते रे मैंने दरखत बलि गिन दो इतना कम होया करता आज हरियाली आई है। इंदिरा गांधी नहर रो असर है चाहे कहीं भी देख लो वृक्षारोपण रो असर है चारा खानी दरखत तो घना ही दिखे दिखे नहीं तो वो सब जागरूकता सु ही संभव हो पायो है और आ जागरूकता ना सिर्फ खेजड़ी रे छोटे आंदोलन ने छोटी सी जरूरत है बल्कि ने और बड़े रूप में मैंने अपनाने री जरूरत है।
1: देखो सर खेजड़ी रे आप धार्मिक पक्ष देखा तो आप सामने आवे कि जे आप बड़ी तीज ले लो सावण तीज की हो या
0: कि
1: और बीरे अलावा आप जिकी भादवेरी तीज ले लो चाहे बछबारस ले लो चाहे नागपंचम ले लो कोई भी हो तो घरे माने प्रतीकात्मक रूप से पाड़ बनाया करे जगह में पानी राखे वो प्रतीक है तालाब रो वो प्रतीक है नदी रो क्योंकि अपर पश्चिम राजस्थान में नदी तालाब और कम रहे तो वो प्रतीक रूप में बिने बनाया जावे और बीरे पाड़ रहे माथे रोपीजे खेजड़ी री डाल बीरो मूल कारण क्या है कि खेजड़ी जी की है बार दूर दराज में भी अगर पानी हो तो भी जड़े भी पानी ने खेच और भी दरखत ने हरियो भरियो राखे आ भी विशेषता है। और बी दरखत ने क्या है चाहे जीव जिनावर है पशु है बे खार पीर और आप रो शरीर है बे भरियो पुरियो राखे क्योंकि आ है अपारी धार्मिक व्यवस्था बी कारण सु पूजन जद भी करे तो खेजड़ी री पूजा होया करे खेजड़ी माने लोग दूध जिकी है अर्पित करे और तीस त्यौहार माथे भी खेजड़ो बड़ो

0: है। और दूसरा ऐतिहासिक परंपरा देखा तो अमृता देवी रेसा गए 363 लुगाया है मिनक है आप रो शहादत दी फगत ई वास्ते कि खेजड़ी जिंदा रहे
1: बिल्कुल
0: और वही सोच जिके आ भारत री सोच है।
1: और गांव रे मैंने अगर थे देख लो आज भी खेतर मैंने अगर घर जगह बनुड़े रोई में घर बनुड़े बे आप रे घर खन खेजड़ी जरूर लगे हुए या तो या घर ही बीज गया बनावे जटे पहली छू खेजड़ी लागुड़ी
0: एकदम।
1: कारण वो है कि घर में रहे धन जको है गर्मी में कठे रहसी छपरा रे मैंने रहे कोनी गांव रे जत धन है जका ए शहर रे मैंने रहे गांव रे मैंने धन खेजड़ी नीचे बांधी दे सगड़ो पशुधन जको है पशुधन ने धनी के हमारे मायने तो अपारे ठीक है। ऊंट जको है वो खेजड़ी नीचे बांध दीजिए गाय भैंस बड़द जगह भी है खेजड़ी नीचे रहे और आने खेजड़ी नीचे सुख मिले और तो गांव में मन्ने भी ध्यान है छोटा आने जब बिजली कनेक्शन को नहीं होता इंद्र भगत में माचो ढाल खेजड़ी नीचे बैठ जाता इतनी बड़ी छिया होती कि भी एक हिस्से में ऊंट भी रह लेता दो ऊंट ले लेता तीन चार गाय रह लेती और खंड माचो ढालड़ो भी रह जाते तो सगड़ा ही काम हो जाता खेजड़ी रे नीचे जो
0: देखो कितना महत्व है खेजड़ी रो और आ चीज की है खेजड़ी है तो बृखा होवे तो बृखा होवे जन पणिहारिन पानी लेवने जावे तो अठे आप गीत भी ले साला हाँ पणिहारी गायत्री सोलंकी रो गाइडो गीत लो है खेजड़ली रो गीत सुना मीठो सा
1: सुनाओ फिर

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति। हेल्दी
1: बीकाना। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: फिर सांस।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

नमामि भाई, देखो गर्मी रे महीने आलू प्याज री जकी है खपत सगड़ो ज्यादा है, के गांव रे महीने जको है हरी सब्जी बहुत दोरी मिल पावे और गांव रे महीने आलू प्याज जको है आसानी से उपलब्ध हो जाए। रोई रे महीने भी घर है, गांव में भी है, दूर गांव खेड़ा में कठे भी है नहीं, तो आलू प्याज मिल जावे। तो ये आलू प्याज या प्याज कह दो कांदा कह दो गांव पर दोनों नाम ली जाए, तो ईरो भंडारण वास्ते अनुदान योजना है जकी भी चल रही है और आज की है बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, किसान खातर बहुत ही उपयोगी है। बीकानेर संभाग में मैंने जगह किसान प्याज की खेती करे है तो वे फसल तैयार हो जावे पर बाजार में मैंने आवक बढ़ जावे, जकर कारण प्याज का दाम भी बकत अगर घटूड़ा हुआ तो किसान ने सस्ते दाम में बेचना पड़े, वो बाद में बढ़ जावे जन किसान ने पूरा फायदा मिल कौन पावे। ई समस्या

0: तर सरकार भंडारण सुविधा माथे जोर दे रही है कि सही ढंग से अगर सुरक्षित राख ले किसान तो माने भाद्र महीने लाभ मिल जाए।
1: और सबसे मोटी बात आ है कि प्यास भंडारण भवन एडो बनाना चाहिए जिन्हें माने हवारी आवाजाही बराबर होती रहे, नमी कम रहे, तापमान नियंत्रण रहे और कांदो जल्दी से खराब भी नहीं हुए। वैज्ञानिक ढंग से तैयार भंडारण संरचना रो नुकसान घणो कम हो जाए। कई बार आप वैज्ञानिक ढंग से करा नहीं तो जो नुकसान होना है वो नुकसान बहुत कम हुआ, लगभग नहीं रहे बरोबर हुए। और सरकार उद्देश्य भी है कि किसान आधुनिक भंडार संरचना अपनावे। अगर किसान कांदा कई महीना सुरक्षित रखना चाहे और भाव बढ़ने पर बेच सके जिनसे बिना आमदनी भी बढ़े। बीकानेर तो ऐसा इलाको है जिसको गणकरो सूखो है, अड़े उचित भंडारण तकनीक अपनावन सो कांदा लंबे वक्त तक सुरक्षित रह सके। किसान समूह या किसान उत्पादक संगठन और सरकारी समितियां मिलकर सामूहिक भंडारण भी विकसित कर सके।
0: पर मैंने एक बात बताओ थे, भंडारण जद करानी कई सावधान रखनी पड़े, तो बीर बारे में आज थोड़ा सी मैंने बताओ थे।
1: देखो सा आपने कही है खाली आ को नहीं करना है कि भंडारण सीधो कर दो कांदा, सूखेलो प्याज है भी भंडारण करना है। रोगग्रस्त है या कटेलो कांदो हो गए यानी कड़े गलियोड़ो सलियोड़ो गए तो बिना मत करो क्योंकि एक कांदो दूसरे कांदे ने खराब कर देवे। वैसे चुक चुकारी ध्यान रखो, कांदे ने जमीन से ऊपर जालीदार प्लेटफॉर्म हुए वो बनाई रखो, बीर माथे रखना चाहिए नीचे से भी हवा पूरी पूरी पुगे ताकि क्या है बीर माने गलन की संभावना नहीं रहे। और भंडारण भवन रे मायने हवारी पर्याप्त आवाजाही होनी चाहिए और बखत बखत माथे खराब गांठिया निकालता रहना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा अतोगी। और भी देखो देखने में आ रहा है कई बार किसान केवे भी है के प्याज जो है भंडारण तकनीक रो लाभ लियो है और बिसु घणो फायदो कमायो है के भंडारण जित तक रहे जित तक चोखा भाव नहीं आ जाए, ज्या बाजार में चोखा भाव मिले नहीं बी टाइम बे भंडारण आलो प्याज जो है बाजार में मैंने बेचे। और भगत भगत स्वरू जो कृषि विभाग है बीरी भी कई योजना चले, किसान भाई अगर आवेदन करे तो पहला आप रे नजदीकी जो भी है कृषि विभाग कार्यालय कृषि पर्यवेक्षक कृषि अधीक्षक इन्हें संग मिल लेवे और जो कि पात्रता है अनुदान प्रतिशत आवेदन प्रक्रिया इस बारे में जानकारी ले सके।
1: तो भरत भाई देखो भंडारण भगत भवन बनावन भरसू काम को नहीं चलेला बल्कि इरे वास्ते आर्थिक रणनीति होनी चाहिए। अगर किसान सही बखत माथे बिक्री करे तो खेती रे मने लाभ भी चोखो बढ़ सके।
0: और आज खाली उत्पादन तक सीमित कोनी है और जब नई बात कराने आधुनिक तकनीक तो बीर मैंने भंडारण भी शामिल है, बीर में प्रसंस्करण भी शामिल है, बीर मैंने बाजार तक सप्लाई जकी के विपणन है वो भी शामिल है। सगली बातारो ध्यान में राखर किसान ये आधुनिक तकनीक ने अगर अपनावा तो ना सिर्फ अपनी फसल सुरक्षित रख सके बल्कि खेती ने लाभकारी भी बना सके।
1: अब देखो सा किसान भाई बहन हुए या कोई भी हुए अपार लोग चूंकि आप ये क्षेत्र माने रहवा तो बाजरी रो सोगरो हुए सागे कांदो हुए सागे हुए गुड़ तो फिर कहना ही क्या है।
0: और फिर बाद रे मैंने अगर चोखो गीतड़ दो भी बाजे अगर रेडियो रे मैंने तो आनंद आ जाए। देखो काकी जो खीचड़ो ठार रही है खीचड़ो ठार रही है सगड़ा भाई लोग है जगह आप नंबर लगाए बैठा है कि खीचड़ो खावा ठीक है कड्डी है जो कि एक एक खनी बन रही है कड्डी खींचड़ो जो को है बिना सगड़ा डीक रहे अपन खाता खाता अगर आप भी भाया ने गीतड़ लो सुना दात केड़ो करे
1: बहुत बढ़िया।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं, 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: भरत भाई, देखो कि अब आज यहाँ बिरखा हुए और बिरखा रो पानी अपा शहर मान देखा तो वो ई अणु तो बह जावे
7: बेवे भाई बेवे
6: और बेवो जन जी दो घणी पर कर भी क्या सका।
7: हाँ,
6: गणसुगण घर घर जगह बड़ा घर है या बेवाटे हार्मोनिक सिस्टम सो पानी जमीन तक पुगा सके।
7: हाँ,
6: पर आपा गाँव रे मायने जिका है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चाल रहे।
7: हाँ,
6: बीरे मुजब क्या है कि जिका भी पानी जिके बिरखा रो पानी है बिने भेड़ो करने रो एक तरीको भी माने बतावे कि बीरे माध्यम सो के पानी ने किया भेड़ा करा किया बिना परोटा और किया पानी ने क्या है रोकियो जा सके। अब जहाँ अपार कुआ है, बावड़ी है, तालाब है या जोहड़ है तो भी मैंने पानी भेड़ो करना हो या बिना रोकनो तरीको भी मैंने बताया जावे।
7: बात तो थे सही कह रही हो। मैं एक देखियो रोई रमेन और बिरख आगे तेज और बिरख आगे तेज तो रोई में पानी जको है नहीं अणु तो बेहन लाग फंस गया जन खेल डी नीचे कटी शरण ले रुकुड़ा भाई बरसात बंद हो जन निकला पानी तो आवे के बैठे जठी बग सूए जठी सग बेहो जठी खड़ा बेहो तो जा रही है वो पानी जो बह रही हो नी अन्ने बने भेड़ो हो तो तेन बी टाइम मारे भी विचार है कि अठे अगर वो जकी जगह भेड़ो हो रही है बट कोई तड़ा बनड़ो वे या इन्हें भेड़ो करने की व्यवस्था हो तो पानी काम में लाग जाए। वो जो रोई मैंडे बने तो 2-4 दिन मैंने जब तावड़ो निकले तो उड़ जाए सगड़ो लेकिन इन्हें संग्रहित करियो जा सके और अगर संग्रहित कर ले तो भूजल भी बढ़े और पानी रो उपयोग भी बढ़े बरसात रो पानी है जो लोगों ने काम भी लगे।
6: सही है, खेत माने मेड बंदी जहाँ कर ले तो अभी सुख पानी जो है भी रफ्तार होली हो जावे होली होने कर सो जमीन मनो वो पानी बैठे बिना खेत तड़ाई है बनावने सो पानी है वो तड़ाई रमाने भेड़ो हो जाए तो किसान आप खेत रमाने कही है कि जिकी बिरखा रे पानी ने क्या है सिंचाई वास्ते भी काम ले सके है।
7: गाँव में कह करे टोपे टोपे माटो भरी जावे
6: और टोपो टोपो जिकी व्यवस्था है यानी ड्रिप ड्रिप प्रणाली है बीरे माध्यम से पानी जिको है बीरे उपयोग के सही तरीके से करियो जा सके है।
7: हाँ, तो स्वावलंबी अभियान जिको है आ खाली एक सरकारी

0: योजना कोनी है बल्कि जन भागीदारी रो अभियान है कि गांव रा लोग ग्राम पंचायत किसान सगड़ा जना रल मिल जो को है आप रे पानी री जो को है बचत करे।
1: तो अबे आप बचत करे तो आप टाइम रे भी बचत आपने करनी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: गीतर ले वास्ते। तो सुनो सा हो बढ़िया सो गीत।

0: किसान भैया देखो बिरखा अगर छांटो छिड़को भी हो जावे नहीं भीतर मैंने कई कीट पतंगा आना शुरू हो जावे और कीट पतंगा सु बचाव रो एक जको तरीको है फेरोमेन ट्रैप इन्हें अपनाणो चीज है और जकी यहाँ पर सब्जी है या फल है तना छेदक है या सुंडी रहा कोई भी जगह कीट है इन्हें पकड़ियो जा सके और अगर फेरोमोन ट्रैप लगा दिया तो आपारा प्याज कपास टमाटर बैंगन ऐसा सुरक्षित रह जाए।
1: और अब देखो सर सिंजारी बेड़ा होगी है और आज मंगलवार भी है तो मैं बाबे रो भजन सुना
0: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ
1: सुनो साहु भजन
2: अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम

0: हरजस सुनियो और हरजस रे साथ ही अब घड़ी इशारो कर रही है कि विदा लेने रो वक्त आ गयो है।
1: आप अपना तालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
0: अरे भरत भाई ने देव सा सीख घणान घणा
1: राम
0: राम राम राम, राम, राम।

ग्रामीण श्रोताओं ने अभी अपना कार्यक्रम सुना ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की गाई हुई ये गज़ल।

पंकज उधास के गाए हुए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम था गदर, स्वर था उदित नारायण और प्रीति उत्तम का। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों को, फिल्म का नाम है यह।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: कभी कभी इस फिल्म में आपने मुकेश और लता मंगेशकर को सुना। अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर, विनोद राठौर और साथियों के आवाज में। फिल्म का नाम है डर।
1: ओए होए

फिल्म का नाम था वीर जारा, स्वर था लता मंगेशकर और उदित नारायण का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अब सुनिए उमेश मेहंदीरत्ता का गाया हुआ ये लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका।

का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों

0: में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदिनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026

0: के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And And now the news.

0: लगन।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए फरीद सईद साबरी, अनुपमा देशपांडे और बाबुल सुप्रियो को। फिल्म का नाम है उफ ये मोहब्बत।

0: You bloody loafer!
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 बजने को हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनते हैं चंद गजलें

अमर सिंह की गाई हुई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 10 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अशोक प्रेम का नमस्कार। श्रोताओं, गर्मियों की ये रात, हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमें गर्मी से राहत मिली हुई है, उसके बावजूद भी आज बीकानेर शहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी बेचैनी हम सब के मन में है। वहीं दूसरी ओर ताज़ा खबर ये है कि हॉकी के अंदर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, और निश्चित रूप से देश को जब भी किसी मोर्चे पर जीत मिलती है तो हम सब बीकानेरवासी हों चाहे भारत का कोई भी निवासी हो, वो प्रसन्न होता है। चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वो सीमा पर सरहद पर सेना की विजय की बात हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि जय और पराजय, जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति निरंतर जीतता हुआ या निरंतर हारता हुआ नहीं रह सकता। ये भी कहा जाता है कि जीवन में कोई भी सफलता या असफलता अंतिम नहीं होती। बहरहाल, हम लेकर आ गए हैं आपके पत्र, और पत्रों में लिखी हुई है आपके पसंदीदा गीतों की फरमाइश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पहला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोता कौन कौन हैं। वल्लभ गार्डन बीकानेर से हमारे श्रोता हैं LC शहजादा, कमला देवी पंवार, राजकुमार पंवार, गीता रानी, मयंक पंवार, सत्यनारायण, लालचंद पंवार, अनन्या पंवार।

वंशिका पंवार और राजा पंवार। पवनपुरी बीकानेर से हमारे श्रोता हैं भंवरलाल सोनगरा प्रेमी, गीता रानी, राज सोनगरा, मनोहर लाल, अखिल दायमा, मूलचंद सोनगरा, सुनीता, प्रथम राज, हंसराज, कृष्णा, मुकेश सोनगरा, सावित्री, कशक, अंजलि, अनुष्का, जतिन, आशीष, अमीशा, डॉक्टर सोनू दायमा, लक्षिता, चंचल सोनगरा और अंबिका। ये सब सुनना चाहते हैं ये गीत। स्वर है एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम है फर्स्ट लव लेटर।

अजीज और असगर भाई। अमर सिंह पुरा बीकानेर राजस्थान से हमारे ये श्रोता हैं सिकंदर अली खान। कमला कुलन बीकानेर से हमारे श्रोता सुभाष खत्री, तरुण खत्री, वर्षा खत्री और जय खत्री, ये सब सुनना चाहते हैं ये गीत। स्वर है आशा भोंसले और साथियों का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

लगी सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम इस तरह से हैं: मोहम्मद सरबा श्री डूंगरगढ़ से, मोहम्मद असगर पंवार, मोहम्मद अकबर पंवार, राबिया मुन्नी, बरकत हाजन, गुलजार,

शीतला गेट से बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन भियानी और अमजद अली खींची। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, इनकी डिमांड पर आप भी सुनिए हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य शंकर महादेवन के स्वर में फिल्म परदेश का ये गीत।

आपके पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं जय नारायण व्यास कॉलोनी से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही,

डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोश

कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। मेहरनगर उमरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर रही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, अर्जुन गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहानकर, सुमित गवहानकर और कुमारी धोनी गवहानकर परी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, अनिता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, कुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी, विनोद पुरी, पाली पुरी, डीसी पुरी और अरुण पुरी। ये सब सुनना चाहते हैं ये गीत। गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है जीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, बाबू रेयांश ठाकुर, मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलीप दिलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर, ये सब सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पता हमारा बहुत छोटा सा है, आपकी पसंद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर राजस्थान। मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल

शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, इन सब की ख्वाहिश पर सुनिए नितिन मकेश, साधना सरगम और शबीर कुमार का गाया हुआ फिल्म नमक का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। अशोक प्रेम को नमस्कार। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों

0: में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।